0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।
3: सभी को मेरा नमस्कार। जिन परिवारों व घरों कुमाऊं व अक्वा जलाशय से पानी की आपूर्ति होती है, अगले सप्ताह से उन्हें कई घंटों तक पानी की कटौती जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस समय बुबा से रोजहिल कैट्रोबोन वाक्वा क्यूपिप मोका सैंपिया और रिविया नुआ जैसे इलाके शामिल हैं। ये जलाशय पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश का सबसे बड़ा जल भंडार आज सबसे कम भरा हुआ है। इसका जल स्तर अब केवल 45% से थोड़ा अधिक है, जबकि पूरे मॉरिशस में औसतन भराव स्तर 64% है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी में पंजीकृत 4,15,000 घरों में से लगभग 1,50,000 घर इससे प्रभावित होंगे। यूरोपीय संघ और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के 4 देशों मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल और कोमोरो के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए व्यापार, निवेश और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों संगठनों के बीच 6 सालों तक बातचीत के सकारात्मक नतीजे के रूप में ये हस्ताक्षर किए गए। और दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन आज

0: गुरुवार से शुरू हो रहा है। जी हाँ, फीफा विश्व कप 2026 मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फीफा विश्व कप में पहली बार 48 राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित अज़्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद ये मुकाबला मौसम समयानुसार रात के 11 बजे से शुरू होगा। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर वर्षा भी होगी। शाम को देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बादल कुछ छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। रात को भी बादल छाए रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24। शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.

इस हदीस से मालूम होता है कि खाना खिलाने और सदका करने का सवाब मरहूमीन को भी पहुंचता है। इंसान अगर अपने वालिदैन या अजीज़ों के इसाल सवाब के लिए खाना तकसीम करे तो ये बहुत बाइस अजर अमल है।

नमस्कार, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आपका हृदय की गहराई से स्वागत है। भक्ति की शक्ति को पहचान कर हर भक्त आनंदित हो जाता है। इसी शक्ति के कारण तो भक्त पवित्रता और शांति का आभास करता है। आइए गणपति जी को नमन करते हैं और भक्ति की प्रवाह में बहे चलते हैं।

शिव जी की भक्ति से सदा भला हुआ है। ओम नमः शिवाय जपकर मन हमेशा भोले बाबा के दर्शन की अभिलाषा रखता है। प्रभु चरणों में बैठकर मन जब पूजन करता है शिव जी का और श्रद्धा तथा भक्ति की जलधारा चढ़ाता है, तभी वह अपने प्रभु में रम जाता है।

जय जयकार अंबे माता की कीजिए। मंगल मूर्ति मैया की कृपा पाकर हर किसी का कार्य सफल होता है। सुख की धारा बहाती है अंबे मैया, सबकी रक्षा करती है, भक्तों का कष्ट हरती है। फिर हम भक्त क्यों न सिंहवाहिनी माँ का गुणगान इस प्रकार उल्लास के साथ करें।

श्री रामचंद्र कृपालु कहलाते हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा कहलाते हैं। राम जी के पद चिन्हों पर चलकर हर भक्त का भला ही हुआ है। प्रभु राम जी का नाम भजकर आइए हम वातावरण को राममय बना देते हैं। सारे संसार पर रघुपति कृपा की वर्षा करें, आइए मिलकर यही प्रार्थना करते हैं।

आइए बाल गोपाल कन्हैया लाल की ये लीला सुने। वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत इस लीला को सुनकर हर भक्त मन गदगद हो जाता है। आइए माखन चोर की ये माखन चोरी की

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

जगदम्बे मैया की कृपा पाना संसार का सबसे बड़ा धन पा जाना है। दुर्गा मैया की ममता के आंचल तले जो शांति और जो संतोष हमको प्राप्त होता है वह दुनिया के किसी भी धन से नहीं प्राप्त हो सकता। खरीदी हुई वस्तु पल दो पल का ही सुख देती है पर माता से और भक्ति से प्राप्त कृपा का सुख सदैव रहता है।

अपने प्रभु से जो घनिष्ठता भक्त की होती है उसमें केवल मनाना ही मनाना होता है, रोटना तो होता ही नहीं है। मन जब प्रभु को मनाने की चेष्टा करता है तो वह केवल प्रभु को प्रसन्न रखने की चेष्टा होती है।

भक्ति की धारा के बहाव में हम अपने हृदय को बहने दें। प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए आइए हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को विराम दें। लिए चलते हैं नाम प्रभु का, जय सिया राम, जय सिया राम।

秋天，飞过一只心酸小孤雁，半枯干的枝节，于窗边发展。

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在同你告别，下次节目再会。大厅并未因三人局促。

0: घड़ी मिलाते चलिए इस समय या दिन के 12 बजे हैं।
1: ट्रेकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली नून। आइए सुनते हैं समाचार। पूजा के साथ नमस्कार।
2: नमस्कार गिनीशा, सभी को मेरा नमस्कार। 52 मॉरिशस से तीर्थयात्री हिमालय की ओर रवाना हुए हैं। कल बुधवार 10 जून को वे चार धाम यात्रा के लिए रवाना हुए, जो

0: सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ यात्रा मानी जाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड और प्रधानमंत्री कार्यालय के सहयोग से आयोजित की गई है। एमबीसी प्ले पर फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2026 की सभी मैच देख पाएंगे। सदस्यता के लिए उपयोगकर्ता को ऐप में जाकर टीवी सेक्शन में न्यू वर्ल्ड टीवी चैनल चुनना होगा। इसके बाद 60 दिनों का पैकेज चुनकर सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसी भी जानकारी के लिए एमबीसी हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है इन नंबरों पर 4333135, 4332905, 4333145 या फिर 5944680। महोवाकुआ जलाशय से पानी मिलने वाले परिवार अगले सप्ताह से कई घंटों तक पानी की कटौती का सामना करना पड़ सकते हैं। प्रभावित इलाके बुबासे रोजहिल का ट्रिबून वाकुआ क्यूपिप मुका सैंपिया रिवियनो है। जलाशय की स्थिति गंभीर है। वर्तमान जल स्तर 45% से थोड़ा अधिक, जबकि पूरे मॉरिशस में औसत 64% है। 2025 की तुलना में ये 20% कम है। CWA में पंजीकृत 415,000 घरों में से लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने अपनी लगातार दूसरे दिन की आत्मरक्षा कार्रवाई यानी सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स पूरी कर ली है। ये हमले रातों रात किए गए हैं और ये उस बयान के बाद हुए जिस समय ट्रंप ने कहा था कि तेहरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने में बहुत देर कर दी है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड प्लेन दी रोश में 90 साल के 90 years old श्री जय नारायण रामजतन, जिन्हें लोग जय नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड प्लेन दी रोश से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे अप टू 30 PM। लकावेन नंबर एक वाकुआ में 80 साल की 80 years old बीबी सारा ओलीराम पैदाशी नाम कुदीर और जिन्हें लोग बीबी नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के सवा एक बजे इनके शौहर मोहम्मद तुलेब ओलीराम के मकान लाकावियन नंबर एक वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:15 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। सुहाना सफर के हमारे सभी लिसनर्स का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, स्वागत है आपका। प्रोग्राम तो हमारा वही है, पुराने गीतों का। यहाँ पर बस आपका इंतज़ार है कि आप आए और हमारे प्रोग्राम में छा जाए। तो चलिए, यहाँ पर खूबसूरत गीतों का ये सफ़र लेकर हम आए हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो सिलेक्टेड गाने हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएगा।
1: RM3 Radio, Radio, Radio.

सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: RM3 Radio.
1: सुहाना सफर। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर, मैं कहीं की नहीं, मैं किसी की नहीं। 12:14 हो गए हैं, जहाँ से भी साथ दे रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा प्रोग्राम है सुहाना सफर, जहाँ पर हम सफर बनकर आप आते हैं हमसे मिलने और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्यार से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहेंगे। दीप्ति गंदौरी जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गई हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और चलिए, यहाँ पर जैसे हमने बात करना शुरू किया, कोई है जो हमसे बात करना चाहते हैं तो उनसे मिल लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो,
2: नमस्ते विदिता जी।
1: नमस्ते जी, नाम बताइए अपना।
2: सुनीता।
1: कैसी है सुनीता जी?
2: मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे आप छोड़ के गई थी।
2: अच्छा है।
1: जी बताइए सुनीता जी।
2: एक गाने की मांग करती हूँ।
1: गाना बताइए।
2: हरियाली और रास्ता का, लता मंगेशकर का गया हुआ गाना।
1: कौन
2: है?
1: सा गाना है ये?
2: बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर।
1: बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम।
2: ये तकदीर की तो बात है ना। सबकी तकदीर तो
1: देखो भाई, वक्त से पहले ना किसी को मिला है।
2: मिला है
1: हाँ, कभी मिलेगा। और जो आपके किस

0: कीमत में है आपको वही मिलता है,
1: वही मिलता है।
0: लेकिन ये जो गाना आप मुझे बोल रही है ना, ये गाना जो है इसका टाइटल सॉन्ग है ना ये हरियाली और रास्ता,
1: वो लता मंगेशकर का गया।
0: हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन जो जैसे गाना आप बोल रहे हो ना हरियाली और रास्ता, मेरे ख्याल से इस नहीं नहीं गाना जो है इसमें एक हरियाली और रास्ता है, एक दूसरा है बोल मेरे तकदीर में। तो चलिए आपके तकदीर में ये गाना है तो हम जरूर चलाएंगे आपके लिए, ठीक है?
1: अच्छा जी, चला दीजिएगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आपको। नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 11 जून आज जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें उनको हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। बाकी यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे टिकटॉक के लाइव में जुड़े हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर तरन हमारे साथ हैं, तरन दौलत हमारे साथ हैं, और साथ में लैला मुदारन। मनीता जी कैसी हैं? मनीता जी कहती हैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ आते तो हम तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि हम आए और हम बोले कि हम बीमार हैं? हैं, कभी होता है नहीं ना, इसलिए क्योंकि हमारे दर्द दिल की दवा तो आपके पास है। चलिए यहाँ पर प्रियांशी हमारे साथ हैं, नमस्कार। गाना रवि शालिनी नीरव के लिए और टीना टूरी के नाम भी। हाय एजे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिल राजन कुजन हमारे साथ हैं, नमस्कार। विमी तस्लीमा मिशनुद्दीन बुराही बोंजो, जो कि हमें फ्रांस से सुन रहे हैं। और यहाँ पर रफिया कहती है घूंघट मूवी का गाना। वैसे गाने तो आपको वही सुनने पड़ेंगे जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच निवेन फॉर सेंडिंग मी सो मच लव। एंड परी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहती हैं कि मैं सोच ही रही थी हवा बहुत है लेकिन पता नहीं ये हमारी तरह पागल है कि नहीं। नहीं नहीं, हवा तो चलती है, उनका पागलपन अलग होता है, हमारा रेडियो पे अलग होता है ना सनशाइन। तो चलिए इसी के साथ एक प्यारा सा गाना, अभी गाने की तो फरमाइश आई गई है, चला ही देते हैं।

सुहाना सफर प्रोग्राम हमारा, और ऐसे में हमारे दोस्त जब आ जाते हैं ना तो ये प्रोग्राम सुहाना से और भी सुहाना हो जाता है। चलिए यहाँ पर वेलकम करते हैं विशाल का, सुल्ताना, नंद, साकुन, रिया, यासिन कहते हैं शिवानी के लिए गाना, और वहीं पे सूरज जैसे जदा त्रियोली से साथ दे रहे हैं, साहिल आज ऑफ है घर पे हैं, और वहीं पे एस्था हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय आयशा जल्दी जल्दी आती है, हेलो हाय बोलती है और बाय बोल के निकल जाती है। ललिता बाकवास से हैं, संजय नायक को आपके लिए गाना होगा, एंड मिसेस सिंह आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं प्रोग्राम का हमारा नेक्स्ट गाना। कृष्ण कैसे हो, नमस्ते, थैंक यू सो मच यासिन। और यहाँ पर ओके एमजे इवेंट्स, मुझे पता है बस नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आई नो। मनीता जी वेलकम, स्वागत है आपका। विक्रम प्रताप जी आपका भी हम वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? चलिए जी, और यहाँ पे और भी दोस्त हैं हमारे, शर्मिला चुनीलाल कैसे हो शर्मिला, हेलो सित्साव्या कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीजा कहती हैं साइलेश के लिए गाना हो जाए, वहीं पे रियाद महरेज हमारे साथ हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और कौन सा गाना चलेगा, वैसे किशोर दा की आवाज़ में एक गाना है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस गाने के मुझे पता है फरमाइश आई थी और ये गाना हम चला नहीं पाए थे, तो लीजिए

0: अफसाने या तो प्यार के होते हैं या दर्द के होते हैं, लेकिन होते हैं ज़रूर और होते हैं बड़े ही दिलचस्प।
1: सुहाना सफ़र
0: चलिए जी, सुहाना सफ़र प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज हैं गुरुवार 11 जून, कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

हैं, दिन के 12:30 बजे हैं, लंच ले रहे हैं बनापेची। बाकी यहाँ पर अब बाकी हमारे जो दोस्त हैं जैसे तेजो, अनिल, युवाना, माया राम दोस्त, जैद एंड शोभा, आपका हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस वही होगा जो हमेशा होता है, और गाना जो होगा हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा बना रहा है और ये भी पूछ रहे हैं कि आपने ऑर्डर किया था। नहीं भाई, हमारे खाने के टाइम नहीं, हमारे गाने के टाइम है अभी, तो हम बाद में बात करेंगे आपसे। चलिए अभी तेज सनातन जी हमारे साथ है तो उनके लिए गाना होगा। एंड एम जे इवेंट्स में जितने भी लोग इस समय काम कर रहे हैं आपको कहेंगे हम बोंकुराज।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए जी, प्रोग्राम तो है सुहाना सफ़र, और इस सफ़र में अब हमारे कौन वो हम सफ़र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये भी देख लेते हैं।

कार्यक्रम का हमारा जो अगला गाना होगा अब आपके लिए लेकर आए हैं, और ये सिलसिला फिल्म का गाना है जिसकी फरमाइश तो आई गई थी, अब उनको पसंद है ये गाना तो चला ही देते हैं। बाकी कविता नूर, रेणुका, सूबी, मीनू अतवाल हमारे साथ हैं, और कई सारे लोग हैं जो इस समय हमारे गाने के साथ जुड़े हुए हैं। और परी जी, आपने भी कहा ना कि आपको अभी जो है हमारे साथ खाने बनाने में मदद करनी है, लेकिन अभी यहाँ पर हम गाना बनाने में कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो गाने हम सेलेक्ट करे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और अभी के लिए तो गाना जो हमने चुना है आपके लिए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, तो चलिए इन सिलसिलों को जारी रखते हैं। शिरीन रामजोन आपके लिए गाना होगा कल्याणी हरी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाना जाएगा बेटे विश्वन के लिए, और कॉलेज में है वो रिविया चौंपा के, आई होप कि वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, गाना उनके लिए। कविता वरुण दयाल आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, कैसी हैं आप?

0: सुहाना सफर सुहाना सफर वेलकम टू सुहाना सफर विनीता के साथ। चलिए जी, यहाँ पर अब गीतों के इस हसीन सफर में जुड़ी हुई है हमारे साथ बिलनुआ से रंभा जी। कहती है नेक्स्ट गाना उनकी मम्मी कमलाबाई बीका के लिए जो 94 इयर्स ओल्ड की है। क्या बात है, आपको तो बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ मैं और जादू की झप्पी। चलो भाई आपके मम्मा के लिए। साथ में यहाँ पर मुमुन हमारे साथ हैं, कैसी हो मुमुन? और साथ में है अंजिरा मुगम शीतल एंड वी हैव जेड फ्रॉम यूके, राइट? ओके, आयशा एंड विकास हमें सुन रहे हैं, वी हैव रेशमा सरोज लीना एंड दीप। और वहीं पे गाना हम डेडिकेट करते हैं उनके लिए जो अभी हमारे साथ गाना सुन रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं, तो गाड़ी संभाल के चलाएगा और गाना जो होगा लीजिए चल पड़ा आपके लिए।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: चलो भाई, गाना था झुक गया आसमान फिल्म से और किसी ने तो मुझे डरा ही दिया। परी कहती है इसमें उनकी आत्मा घूमती है, किसी ने कहा नहीं बिल्कुल वो नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो आपस में ही बहुत सारी बातें हो रही है। व्हाई डोंट यू जॉइन अस हमारे टिकटॉक लाइव में, आपको भी पता चले कि यहाँ पर क्या होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने के साथ। और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं आप तमाम लिसनर्स के नाम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीला रामा, सिद्ध, मोहम्मद शरीफ, जोजी चिटरे, वी हैव विकास पातू, सरिता विश्वनाथ प्रयाग, बबीता बुलाकी, रागिनी सूर्या एंड हमारी प्यारी सी रेशमा नाक्षी दीजी जो रोज़ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी रहती हैं। और यहाँ पर जैद कहते हैं कि लंदन में बहुत बारिश हो रही है, कोई ऐसा गाना लगा दो जिससे क्या लगे दिन अच्छा गुजरे। वैसे तो हमारे सभी गाने ऐसे हैं कि सुनकर गाने मूड अच्छा हो ही जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बीट बढ़ा देते हैं।

खाना सफर, खाना सफर। गाना अच्छा था, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, कैसे ऐसे वैसे, लेकिन गाना बड़ा मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। मनीप्रिया के लिए गाना, और आपने जो गाना मांगा है वो चलाऊंगी ज़रूर। शवि हमारे साथ हैं, रोशन बहादुर, आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और साथ में ये गाना हम उन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जिस समय काम पर हैं और काम में हमें सुन रहे हैं। चलिए भाई, हमारे गाने तो आपको दीवाना कर ही रहे हैं, तो ऐसे में एक प्यारा सा गाना आपके लिए, फिल्म है मेरे जीवन साथी। मिलते हैं 1 बजे के समाचारों के बाद।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाती चलिए, इस समय दिन के एक बजा है। आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। अब यदि कोई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन हाथ में इस्तेमाल करता है या मोटरसाइकिल चलाते समय फ़ोन का उपयोग करता है तो उस पर 5 अंक लगाए जाएंगे। यदि वो अदालत में मामले को चुनौती देता है और बाद में दोषी पाया जाता है तो अंक बढ़कर 10 हो जाएंगे। हालांकि हैंड फ्री किट और कुछ ब्लूटूथ डिवाइस की अनुमति बनी रहेगी, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर

0: जुर्माना लग सकता है। अब्सा ग्रुप ने मॉरिशस को अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र बताया है। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान बैंकिंग ग्रुप ने निवेश, व्यापार और कॉरपोरेट बैंकिंग के लिए मॉरिशस की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित किया। ग्रुप वर्तमान में 12 अफ्रीकी देशों में सक्रिय है और 12 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। अगले सप्ताह से मोवाक्वा जलाशय से पानी प्राप्त करने वाले कई इलाकों में जल आपूर्ति पर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। बोबासैन रुजिल का ट्रबून वाक्वा क्यूपिप मुका सैम्पिय और ब्लैक रिवर इससे प्रभावित होंगे। देश के बड़े जलाशय का जल स्तर घटकर 45% से कुछ अधिक रह गया है। मॉरिशस, मडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस ने यूरोपीय संघ के साथ उन्नत आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता पूरी कर ली है। इस समझौते से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही मॉरिशस को यूरोप के विशाल बाजार तक विशेष पहुंच बनाए रखने में मदद मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको में होगा। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका के आज़टेका स्टेडियम में होगा। पहली बार वर्ल्ड कप में 48 राष्ट्रीय टीमें हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड कप के साथ पानिनी एल्बम का उत्साह भी मॉरिशस में बढ़ गया है। फुटबॉल प्रेमी और संग्रहकर्ता अपने एल्बम पूरे करने के लिए स्टिकर्स का आदान प्रदान कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ये शौक बचपन की यादों और वर्ल्ड कप के जुनून से जुड़ा हुआ है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी 104 मुकाबले एमबीसी प्ले पर सीधे देखे जा सकेंगे। सदस्यता के लिए दर्शकों को एमबीसी प्ले ऐप पर न्यू वर्ल्ड टीवी पैकेज सक्रिय करना होगा। अधिक जानकारी के लिए एमबीसी हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। विदेश स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। साई बाबा रोड बिलेरविया सेश में 60 साल के 60 years old के देवदत्त राम खलावन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें शफा ताक्सी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान बिलेरविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। ट्रियो रोड त्रियोली में 65 साल की 65 years old की जयंती गुप घनश्याम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम रचिया, लोग उन्हें सकुन के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन की 11 बजे उन्हीं के मकान थियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: मंजिलें अपनी जगह होती हैं और रास्ते वही होते हैं, चलना हमको पड़ता है। अब किस गली को पकड़ना पड़ता है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, ये सब हम पर ही तो डिपेंड करता है।
1: सुहाना सफर।
0: दिन के 1:10 हुए हैं और आज हैं 11 जून। चलिए तो यहाँ पर श्यामा रिदो आपके नाम गाना डेडिकेट करते हैं। इंदिरा हैं ट्रियोलिस से और साथ में हैं जीतन दुलवा। अभी श्यामा जी कहती हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या कर रहे हो हॉस्पिटल में बताना ज़रूर। काम कर रहे हो तो सभी आपके कलीग्स के लिए, आपके सभी स्टाफ के लिए। गीता जी हमारे साथ हैं, शारदा सरस्वती भी हमारे साथ हैं और अमृता आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। चलिए भाई, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं। भाई नॉटी तो मैं बचपन से ही थी और अभी भी हूँ। रेशमा राम की सुन जी, कैसी हैं आप? हेलो बेबू में बेबू, कैसी हो बेबू? अंजलि चितियार हमारे साथ हैं, वो को आज आपको भी कहेंगे। एंड साथ में अभी इस गाने को सुनकर काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं। इतने भी दूर मत जाओ, हम यहीं पे हैं, हम 2026 में पहुंच गए हैं।

0: दर्द दिल की दवा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। रेखा जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। चलो भाई, दादी दीरवंती के लिए गाना होगा और साथ में गाना होगा उनके लिए जो काम पर हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा म्यूजिक चल रहा है।
1: You're listening RM Free Radio.

इस गाने की फरमाइश आई थी और ये गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं रफी साहब की आवाज़ में। रेखा जी, आज आपका बर्थडे है तो विश करते हैं आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। पवन रूपन, वैदेही, वीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इधर काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं। जोश शमाही, कैसे हो? हाई वेलकम, हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। एंड हेलो लवली मदर उमिला के लिए गाना, पापा सुरेश सुकन घोंगुप से हैं। और माधुरी जी फाइनली 1-2-3 करके आई, 1 बजे ही आई। चलिए सुनते हैं गाना स्पेशली आपके लिए।

आ जरा मेरे हम नशीं थाम ले मुझे थाम ले। पूनम फम का ये गाना आपको ज़रूर पसंद आ रहा है, जानती हूँ। यहाँ पर कहते हैं कोई कि राज बब्बर, पूनम धीरन, कल्पना अय्यर याद आ गए, हमें लगता है आपको ये फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्चना डांडा फ्रॉम न्यूजीलैंड, हाय, बहुत दिन हुए आपके दर्शन नहीं हुए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए इसी के साथ जो नेक्स्ट गाना होगा वो भी डेडिकेट करते हैं अब हम बबीता के लिए, फॉर लास्ट स्कूल। जोहरा कहती है सुहाना सफ़र में मज़ा ही आ गया, थैंक यू सो मच सलोनी दोहाजी। और गाना होगा आपके बच्चे लवीश और भूमि के नाम।

0: अपने प्यार के सपने सच हुए, आपके सपने कहां तक सच हुए बताइएगा जरूर।
1: सुहाना सफर
0: हमारा प्रोग्राम और जिसमें सब अपने सपनों को सच करने में लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पर दूसरे लोगों से भी मिल लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि वो हमारे गाने कैसे सुन रहे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं। वेलकम करते हैं हम यहाँ पर आपका अरपन, एंड वी हैव किंग, वी हैव रीना और साथ में ललिता अनोरखी। हाय, कैसे हो भाई? बहुत टाइम लगाया लेकिन आ तो गए। यहाँ पर हमारे साथ है बेनज़ीर, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच लव। शारदा लखनौत, ललित मोहन, साउल साहब, राजेश, वी हैव शेन केनेडी, वी हैव बबीता बंधु, सरिता थापा एंड वानी। वेलकम टू रेडियो मनोरंजन, वेलकम हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर।
2: RL3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो हमारा अगला गाना होगा हम इसे अपने सभी प्यारे श्रोताओं के नाम चलाना चाहेंगे और ये गाना होगा रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म है तीसरी मंजिल, ये गाना हम डेडिकेट करते हैं गुड आफ्टरनून अनीता हेवलिक ऑफ लाख से उनके नाम, और साथ में ये गाना जाएगा सुंदर फैमिली के लिए, शुभ दिन आपको भी। कैसे हैं, ये हैं शारदा और सभी आर एन थ्री फैमिली के लिए आपने गाना मांगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला गाना होगा वो आपके लिए हम चला रहे हैं और गाना होगा आपके लिए नाजिमा गोवर्धन, हमारे साथ हैं संजय, लवना, आशा फकीर और पेची काफ़े, बबीता बंधु जी आपको भी ये गाना शायद पसंद आ जाए तो इसको एंजॉय कीजिएगा। एंड यही गाना हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं और यहाँ पर रंभा जी हमारे साथ हैं, अलग रंभा हैं उनके नाम गाना डेडिकेट करते हैं। अनीता पैतुब जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में। चलिए इसी के साथ अभी गाना होगा आपके लिए
1: RM3 Radio.

देखा होकर मेहरबान और वैसे ही हमारे दोस्त मेहरबान होकर हमारे टिकटॉक लाइव में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं और यहाँ हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। माया दीनदयाल जी, आपका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में और साथ में यहीं पे गाना हम डेडिकेट करते हैं उन तमाम लिसनर्स के लिए जिनको हमारी गाने पसंद आ रहे हैं और जिनको प्यार है हमारे उस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुहाना सफ़र। तो चलिए, साधना मुकेश लाल माटी से साथ दे रहे हैं, ये गाना आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि काश ये वक्त थम जाता तो कितना अच्छा होता। चलो भाई, इसी के साथ हम सिरतन फैमिली के लिए गाना डेडिकेट करते हैं। नाहिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और माला जी, अगर आपको पसंद है तो अभी कार्यक्रम का अगला गाना आपके नाम करें। और ये गाना हम सीता पदारत और रोमॉक के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। रोमॉक, वेलकम, हाय, हाउ आर यू। और विक्की हमारे साथ, राजेश कहते हैं वाह क्या स्टाइल है, दिनेश गोपी जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अभी इस गाने के बाद करते हैं ना थोड़ी मस्ती।

खूबसूरत गीतों का ये सिलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं. प्रोग्राम है सुहाना सफर. हमारे जो लिसनर्स हैं कहते हैं हमें और मस्ती चाहिए, और मस्ती चाहिए. गाने कुछ ऐसे हो जिससे हम खुश हो जाए. तो चलिए यहाँ पर प्रकाश बावरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जोहरा कहती हैं कि भाई हमारे दिन डल हो जाते अगर रेडियो मनोरंजन नहीं होता. कोई बात नहीं, है ना. ललिता जी कहती है मैं पहली बार आई हूँ रेडियो पर और मेरा नाम है ललिता बाबूलाल, वाकवा से हूँ, गाने एंजॉय कर रही हूँ. थैंक यू कमला जी, थैंक यू आपको, और आप सुनते रहिएगा. और गौरी हमारे साथ हैं. वैसे इस तैयारा का गाना तो नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ जगदीश जी आपके लिए ये गाना. और हमारी प्यारी सहेली, दिस वन फॉर यू.

0: RM3 Radio.
1: चलिए जब तो जाने का समय हो गया है साजन और सिमला के लिए गाना होगा पूनम शंभू वेलकम तैयब संगीता मोलू और अभिषेक आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में चलिए जी सिस्टर छोटी सी सिस्टर पता नहीं या नाम तो लिखा नहीं लेकिन थैंक यू सो मच जगदीश जी गाना आपको अच्छा लगा जानकर अच्छा लगा चलिए जी तारा नरसिंह आपके लिए गाना एंड साथ में यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं द नेक्स्ट गाना अपने तमाम लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़े रहे लेकिन मैसेज नहीं आए लेकिन बहुत सारा प्यार आपके लिए गाना सुनिए ये गाना हमें लेके जा रहा है 2 बजे के समाचारों की ओर फिर बाकी प्रोग्राम आप सुन पाएंगे हमें इजाजत दीजिए मिलते हैं कल 12 बजे आप ही के प्रोग्राम के साथ थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नित्य कला चलते चलते।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all
3: night. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, दो बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। चार वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला आज रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये ऐतिहासिक मुकाबला मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित आस्तेगा स्टेडियम में होगा, जहां मौसम समयानुसार रात्रि के 11 बजे किक ऑफ होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बात यह है कि ये मुकाबला एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक विशेष कार्यक्रम रात्रि के 8:30 बजे प्रसारित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने

0: अपनी सहायता सेवाओं को और मजबूत किया है। टेलीफोन असिस्टेंस, जनसंपर्क सेवाओं और तकनीकी सहायता के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फुटबॉल प्रेमी वर्ल्ड कप के रोमांच का पूरा आनंद बिना किसी रुकावट के उठा सके। फीफा वर्ल्ड कप इस समय पूरी दुनिया इस की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन मैदान पर होने वाले मैचों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसके आर्थिक प्रभावों पर भी करीब नज़र रखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रतियोगिता से पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग, रेस्टोरों और परिवहन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। करोड़ों दर्शकों और लाखों पर्यटकों के आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में नई गतिविधियां पैदा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन आर्थिक लाभों की वास्तविक तस्वीर प्रतियोगिता के बाद ही सामने आएगी। आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना की एक विशेष यात्रा पर 52 मर्शन श्रद्धालु हिमालय की ओर रवाना हो गए हैं। वे भारत में आयोजित होने वाली पवित्र चार धाम यात्रा में भाग ले रहे हैं, जिसे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। मर्श सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु उत्तराखंड के चार पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
3: स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम, जहाँ पे हम नाटक के बारे में बात करते हैं, रंगमंच के बारे में बात करते हैं। और रंगमंच जैसे हम जानते हैं कि विषय है, लेकिन एक विषय के साथ साथ एक पूरी दुनिया भी है, एक पूरा विश्व है। क्योंकि नाटक में नृत्य भी आता है, नाटक में गायन भी आता है, नाटक में अभिनय भी आता है, नाटक में निर्देशन भी आता है, साज सज्जा भी आता है, मतलब पूरा एक विश्व है नाटक में। तो चलिए इस बड़े से विश्व में एक एक कदम उठाकर हम उसमें रखते हैं और उसका एक कलाकार आप लोगों से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नंददेव सिपोल जी, उसको हम परमानंद सिपोल भी कहते हैं। परमानंद जी नमस्ते।
4: नमस्कार,
3: आपका हम स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद।
3: आप कैसे हैं?
4: बढ़िया।
3: बहुत अच्छा,
4: बहुत अच्छा।
3: कार्यक्रम हमारा नाटक पर आधारित है, रंगमंच पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा लेकिन आपका अनुभव कितने साल तक रहा है नाटक के क्षेत्र में?
4: लगभग 20 साल से ज्यादा होगा, मैं सोचता हूँ
3: 20 साल से ज्यादा।
4: हाँ हाँ,
3: नाटक के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमें सुन रहे और देख रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि नंददेव सिपोल, जिसको हम परमानंद सिपोल भी कहते हैं, आप एक नाटककार है, एक कलाकार है। कलाकार मतलब कलाकार पानी की तरह है, किसी भी पात्र में आप उसको आप डाल दीजिएगा, वो वही रूप धारण करेगा। तो नंददेव जी, आप एक गायक है, एक लेखक है और एक नाटककार है, अभिनेता है, और आप स्पोर्ट्स भी करते हैं, कराटे करते हैं, क्या करते हैं?
4: ताइक्वांडो करता हूं।
3: ताइक्वांडो, तो सब मतलब वैसे हम तो नहीं करते हैं, लेकिन ताइक्वांडो और कराटे में फर्क क्या है?
4: उसका जो जैसे ताइक्वांडो में ज्यादा हम पैर को इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो ये डिफरेंस है। लगभग
3: ताइक्वांडो में पैर का इस्तेमाल,
4: पैर ज्यादा होता है, क्यों? पैर से दूर से मार सकते हैं, यानी कि या अपने को बचाव कर सकते हैं।
3: तो मतलब वहाँ पे बैठे बैठे आप मुझे मार सकते हैं।
4: हाँ, सही बात। सही बात।
3: तो जैसे हमने कहा कि नाटक का अनुभव आपका 20 साल से ऊपर, और ताइक्वांडो में
4: वो 15 साल
3: 15 साल। हाँ। आप त्रियोले के निवासी हैं।
4: त्रियोले के निवासी।
3: तो आपके जीवन के बारे में हम जान

0: आना चाहेंगे, किस तरह से आप नाटक के साथ जुड़े हुए हैं, गायन के साथ जुड़े हुए हैं और ताइक्वांडो के साथ भी जुड़े हुए हैं, मतलब पूरा आप हमें बताइए।
1: वैसे तो मेन जो बोलते हैं, मैं ढोलक तबला वादक हूँ। हमारा एक टोली है जो नॉर्दर्न ऑथिस एसोसिएशन बोलते हैं, उनमें मैं साथ देता हूँ ढोलक पर, तबला पर वो। और लेकिन ढोलक जो है बचपन से ही मैं उसमें इंटरेस्ट मेरा है उस पर। तो बाद में कुछ दोस्तों के साथ एक टोली बनाई, पहले नाम था जागृति सरस्वती संघ। तो जहाँ जहाँ पर कथा होता था हम लोग जाते थे भजन करने,
0: जगराकता करते थे। जागृति,
1: हाँ। तो क्या होता है, वो आचार्य जो होते हैं वो कथा सुनाते हैं, तो हम साथ देते थे साथ साथ जब भजन गाते हैं। तो ऐसे ऐसे तो यहाँ से शुरू हुआ, और बाद में जाकर दोस्त लोग आए बोले कि थोड़ा सहयोग दो, हम लोग चाहते हैं कि हम जिसे बोलते हैं फुल लेंग्थ प्ले करें, तो तुम्हारा जो संस्था है वेल ऑर्गेनाइज है, अच्छी तरह से चलाते हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी भाग लूँगा। मेरा भी इच्छा बहुत सालों से है कि मैं कुछ करूँ इस क्षेत्र में, तो शुरू किया। वैसे इससे पहले थोड़ा स्केच थोड़ा ये सब करते थे, जहाँ जहाँ लोग बुलाते थे, तो दोस्त हैं जैसे कमल राजकमल चिंतामणि है, भाई सादा सिंह है, भाई राजेश सिबुआ जी हैं, इन सब लोगों के साथ, तभी भाई अजीत जो किस्तू हैं आप जानते होंगे, ये सब दोस्त हैं। तो जो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम जाते हैं साथ देते हैं बस।
0: तो आपका जीवन पूरे मतलब कला के साथ जुड़े हुए हैं और नाटक के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो नाटक के को लेकर एक प्रश्न है, आपने कई मतलब हम अभी मेरे साथ तीन पुस्तिका है छोटी सी नॉर्दर्न ऑथर्स एसोसिएशन द्वारा, जनक पटक है, रामलीला है और सावधान है, एक तीन फुल लेंथ प्ले कह सकते हैं। तो आपका अनुभव, आपका अभिनय नाटक के क्षेत्र में, तो इसके इसके लिए आपको कोई मतलब ऑफिशियली कोई अच्छा सा ट्रेनिंग मिली है नाटक में?
1: नहीं नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं मिला, लेकिन ये जो जैसे ये जो दोस्त लोग अभी जिनके नाम मैंने लिए, इन लोगों के साथ काम करते करते वो लोग बताते हैं, हाँ इस इन लोगों के साथ सीखने को मिला
0: काफ़ी।
1: अभी तक तो अभी तक सीख ही रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो अनुभव मिला बहुत बढ़िया। तो मुझे मौका भी मिला कुछ से एक दो जो शॉर्ट फिल्म्स हैं लोकल हमारे जो देश में बनाते हैं, जैसे अभी एक जल भूल गया उसका नाम क्या है, अभी अभी जो आए थे वो सत्यन भजन जी के, तो उसमें भी पिक्चर में भी थोड़ा थोड़ा जो रोल है उसमें कर लेते हैं।
0: तो आप भजन मंडली के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स विस्का ताइक्वांडो के साथ, नाटक के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप ढोलक भी तबला भी बजा, आपका एक फोटो मैंने देखा आप तबला बजाते हुए, और आपका आपकी संस्थाएं बहुत है और आपका परिवार भी है, आपके बच्चे हैं, तो समय मिलता है इन सब के लिए?
1: हाँ, तो देखिए ना क्या होता है, कुछ अपना जो रूटीन है जो रोज का हमारा काम होता है ना, उससे जब निकलते हैं थोड़ा रिलैक्स जैसे बोलते हैं, तो ये जो संगीत है ना, जो नाटक है ना, कलाकारी है ना, इसके द्वारा हम लोग अपने को थोड़ा ये कर देने हैं, रिलैक्स कूल हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है, हमको निकालना पड़ता है कुछ समय। हाँ, ये है, इसके रिहर्सल डेढ़ देर तक चलता है, 12, 10, 11 ऐसे रात तक चलता है, तो करना पड़ता है, तब जाके कुछ अच्छा करें, तब जाके जो जनता है वो वाह वाही करेगा, तो अच्छा लगेगा। यानी कि एक तो हम हैं खुद को अच्छा लगता है, दूसरे जो हैं जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उन लोगों को अच्छा लगता है, मेहनत बहुत है।
0: इन सभी नाटकों को आप खेल करके इस जिंदगी के इस पड़ाव पर आए हैं, तो आपका कौन सा प्रिय नाटक रहा है जो आपने खेला है, और उस नाटक में आपका कौन सा प्रिय आपका पात्र रहा है?
1: वैसे तो सब जितने किए हैं सब में बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए हम लोग। मैं अभी जो रामलीला हम लोगों ने की है, तो इसमें मेरा बहुत तरह का जो

0: छोटा छोटा जो है ना किरदारी निभाए हैं
1: इसमें। राजेंद्र सदा सिंह द्वारा रामलीला। अभी गत सप्ताह उनके उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी, तो इसी प्रोग्राम में उन्होंने मॉरिशस में नाटक का इतिहास, खासतौर पे जो ट्रुएले गांव में है वहां पे नाटक की शुरुआत किस तरह से हुई उन्होंने बताया। हाँ बता रहे थे
0: रामलीला, उसमें बहुत सी है, मंत्री का रोल है कहीं पर, और एक जहाँ पर है सिपाही का जंगल में, और दूसरा फिर भी है वो कहीं पर जो गांव लोग खुशी मना रहे हैं तो उसमें नाचना भी है, तो ऐसे ऐसे बहुत सी रोल हैं जो निभाई हम लोगों ने, मैंने तो अच्छा लगा रामलीला का जो नयापन उसमें कुछ करने को मिला, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं इसे रिलेटेड हैं ये सब, तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो जो झनक पटक है उसमें मेरा रोल जो कॉमेडी का था।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: लोग कहते हैं कि कॉमेडी पात्र खेलना काफी कठिन होता है।
0: हाँ।
1: आपने खेला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: हाँ, तो वो सच में क्योंकि अपने को उस रोल में अपने को ढालना, एक्सप्रेस करना, जैसे जैसे लगता है कैसे कोई कॉमेडी कैसे कोई मूर्ख है, तो ऐसा रोल भी मिलता है।
1: आप सही मायने में कॉमेडियन है? नहीं
0: नहीं नहीं, मैं जो रोल देते हैं मैं कर लेता हूँ।
1: अच्छा।
0: ना उसमें मुझे थोड़ा जैसे कोई उतना दिमाग नहीं है, तो दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ रोल था मेरा जो उसमें मैं जा रहा हूँ तो दोस्त लोग बोल रहे हैं अरे तू अभी कहा ही नहीं लौकेली, तू तो अभी तीनवा घर कर ले, हाँ अभी लोग तो लुगा धोते रह ले। तो उसमें मैंने कहा देखो मैंने शादी की ताकि जब मैं नहाता हूँ तो मुझे मेरा पीठ धोवा नहीं जाता। समझ गए? तो वो अक्षर में बताना पड़ा, देखो देखो मेरा हाथ पहुँचता नहीं है वहाँ तक, तो इसलिए मुझे शादी करना पड़ा ताकि कोई आके मेरा पीठ धो दे।
1: कोई होना चाहिए पीठ धोने के लिए।
0: हाँ, तो ऐसा ऐसा है, तो हंसाने के लिए लोगों को लिए कुछ ऐसा इस करना पड़ता है। और
1: कितने कितने ड्रामा में कितने नाटक में आपने कॉमेडियन का पात्र निभाया?
0: वैसे बहुत में नहीं है, दो तीन होगा। हाँ, अभी अभी भाई जी तैयार कर रहे हैं, कुछ हो सकता है करेंगे, वो पूरा होगा, फुल लेंथ कॉमेडी ही होगा।
1: कॉमेडी होगा।
0: हाँ, तो अभी तैयार हो रहा है, तो देखते हैं क्या है।
1: आपको याद है और कोई डायलॉग वगैरह जहाँ पे आपने कॉमेडी का रोल निभाया है का अभी तक स्मरण में है?
0: नहीं नहीं, वैसे तो ये मुझे याद रहता है क्योंकि बहुत लोगों को जहाँ बहुत लोग बाद में मुझे पूछते हैं अरे तो कैसे बा पिटिया धोवा ले अभी ले कि नहीं। तो
1: उस
0: अच्छा लगता है।
1: उस नाटक को आपकी बीवी ने देखा?
0: हाँ।
1: उसका रिस्पांस कैसा था?
0: तो उसको पता है ना, ये तो हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो सब लोग हाँ से सास भी देख रहे हैं, ससुर भी देख रहे हैं, सब बच्चे भी देख रहे हैं, तो बोली ये कैसे कैसे रोल ले लेते हो, मैंने कहा हंसाने तब ना हंसोगे,
1: ये तो डायरेक्टर देते हैं और क्या करते हैं। तो कॉमेडियन के अलावा आपने कौन कौन से रोल और निभाए है, एक कलाकार मतलब एक सिंगर के रूप में आपने?
0: हाँ हाँ, वो जो सावधान है ना उसको उसके शुरुआत में हमको वो अपना देश के जो इंडिपेंडेंस डे हैं वो बताना था, तो हमारे देश को वो मिला स्वतंत्रता, तो वो उसमें एक गाना गाना था जिसको मैंने खुद लिखा और मैं खुद गाया, मेरा लड़का रिकॉर्ड किया, और तो जो चार डांसर्स हैं उसमें वो लोग साथ किया और मैं मेन जैसे एक्टिंग होता हूँ उसमें गाया डांस किया, तो वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें, क्योंकि सब हर स्टेप पर मेरा कुछ ये था, और डांस इतना करने के लिए पहली बार मुझे नाटक में मौका मिला, वैसे तो थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते थे लेकिन इसमें फुल एक जो है ना गीत है पूरा उसको ये करना पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा।
1: डांस करते हैं, नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन ये मुझको बहुत अच्छा लगा आप गीत लिखते भी हैं।
0: हाँ।
1: इसके बारे में बताइए, कब से मतलब आपको लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ और लोग पसंद करते हैं?
0: ये क्या है, हालत ऐसा हो गया कि पहली जो जो पहली बार ये किए तो हालत ऐसा हो गया कि कुछ लिखना है, क्योंकि जो गाने वाले थे लिखने वाले थे उसका कुछ पर्सनल वो कुछ हो गया समस्या वो

0: नहीं भाग ले पाएंगे। तो मैंने भाई राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह जी से बोला कि देखो चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। बोला करो, तो मैंने शुरू करा। वो देखा सिचुएशन के बारे से तो आसान है, मैं उतना मुश्किल नहीं है, उसमें सिर्फ अपने को डुबा देना है वो सिचुएशन में, तो अपने आप आने लगता है। और हम लोग संगीत से रुचे हुए जुड़े हुए हैं, तो क्या है उतना मुश्किल नहीं होता।
1: आपको याद है एक दो लाइन जो आपने लिखा है, आप बोल सकते हैं?
0: हाँ, भोजपुरी का गाना है।
1: हाँ,
0: सुन लो भैया सुन लो बहिनिया, तू भी तो सुन लो बबुआ, सुन लो भैया सुन लो बहिनिया, तू भी तो सुन लो बबुआ, देशवा आजाद भइल हो, देशवा आजाद भइल हो, नाचा हो गावा हो खुशियाँ मनावा हो, नाचा हो गावा हो खुशियाँ मनावा हो, देशवा आजाद भइल हो, देशवा आजाद भइल हो।
1: बहुत ही सुंदर, आपने राग भी डाला है।
0: हाँ, और लड़का ने, मेरा बेटा जो है प्रभात, उसी ने डाला राग, और उसी ने वो म्यूजिक, पूरा म्यूजिक उसी का है, उसी ने सब इंस्ट्रूमेंट उसी ने खेला, और ऐसे रिकॉर्ड उसने किया घर ही पे।
1: मतलब नंदेव जी परमानंद सिपोल जी, आप एक कलाकार है और उनका बेटा भी एक कलाकार है, गीत गाते हैं, उनका एक एल्बम आया था महादेव,
0: हे महादेव,
1: हे महादेव आया था, बहुत ही सुंदर, जहाँ पे उन्होंने शिव के बहुत सारे भजन गाए हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर। ये लगभग 5-6 साल,
0: 13-14 साल हो गए,
1: 13-14 साल हो गया है, और बहुत ही सुंदर। आपको अगर आपको समय मिले तो ज़रूर उनके गाने सुनिएगा, और मॉरिशन कलाकार किस तरह से सुंदर रूप से भजन गाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपने भारत में की थी,
0: अहमदाबाद में हुआ था। हाँ,
1: अहमदाबाद में हुआ,
0: और लिखे वो जो उसके लिरिक्स हैं जो हैं पंडित स्वर्गीय पंडित राजेंद्र अरुण जी ने लिखे हैं, उसका वो संगीत दिया है वो हमारे दोस्त डॉक्टर मंगेश कुमार देमका जी, और वो एक इकबाल मीर करके एक वो म्यूजिक डायरेक्टर, उसने सब रिकॉर्डिंग करवाए थे।
1: अभी तक गाते हैं?
0: हाँ,
1: आपका बेटा?
0: हाँ, गाते हैं कभी कभी,
1: कभी कभी,
0: क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उसने टेक ओवर किया है, तो समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन गाते रहते हैं। अभी अभी उसके साला की शादी थी, तो कुछ कार्यक्रम उसने खुद किए, बहुत अच्छा लगता है सुनने को।
1: लोग जब लोग पूछे मजाक मजाक में अब तक गाते हैं, हाँ बाथरूम सिंगर है।
0: वैसे गाने मैं गाता कम हूँ, दोस्तों के साथ गुनगुना लेता हूँ बस, पब्लिक में उतना गाते नहीं, लेकिन मुकेश जी का फैंस हूँ, और लेकिन ढोलक तबला पर साथ देता हूँ। अगर रिक्वेस्ट हो दोस्तों से तो कुछ कभी कभी सुना देते हैं मुकेश जी का कोई एक दो।
1: नहीं, रिक्वेस्ट आ रहा है, आ रहा है लोगों से आ रहा है। अभी हम रेडियो में है और लोग बोलते हुए मुझे अभी यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि मुकेश जी का एक गाना अगर हो जाए आपकी आवाज।
0: चांद सी महबूबा हो मेरी कब

0: था।
1: बहुत ही सुंदर। और
0: हाँ अभी जो मैं थोड़ा जब कुछ सुनाता हूँ ना, खासकर अपने परिवार में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, मैं थोड़ा उसमें बॉडी लैंग्वेज भी डाल देता हूँ, थोड़ा डांसिंग ये सब। तो अभी अभी जो वो शादी था परिवार में, तो उन्होंने वहाँ कुछ सुनाना पड़ेगा, तो मैंने ये गाना चुना। दिल लगा कर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा हम पा रहे हैं जान मन, दिल लगा कर आपसे।
1: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी कैमरा तो इसे सब यहाँ पे, हर टेबल सब यहाँ, नहीं नहीं तो रिक्वेस्ट करते आप थोड़ा सा, मतलब
0: कभी कभी मौका जाइए, कभी मौका मिले तो वो पूरा करेंगे उस पर। मेरा जो फेवरेट गाना है, लोग जब भी मुझे देखते हैं तो बोलते हैं ये गाना गाओ,

0: बहुत ही सुंदर महबूबा मतलब आप मुकेश का एक बहुत ही बड़ा फैन है। सीखा कहाँ से आपने संगीत?
1: संगीत तो सीखा नहीं, बेटे के साथ, वो हमारे दोस्तों के साथ, मंगेश जी हैं, सब साथ में हम मिल जब जाते हैं और मुझे बजाना नहीं है कुछ साथ, तब मैं शुरू हो जाता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अब तबला भी बजाते हैं?
1: तबला
0: ये भी आपने कहीं पे? हाँ,
1: हाँ, ये तो सीखा हूँ।
0: कहाँ पे?
1: थोड़ा सा पहला मेरा जो गुरु था हमारे गुरुजी धर्म ताका जी, तब बाद में थोड़ा बहुत मिला दूसरे जो एक दो गुरु जो ना से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने के लिए, लेकिन उतना नहीं क्योंकि बिजनेस संभाल रहे थे तो समय कम था और गरीब परिवार से निकले तो स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता, तो काम में ध्यान ज़्यादा देना पड़ता था, तो इसलिए उतना इंटरेस्ट उतना उसमें नहीं दे सका समय, लेकिन हो जाता है।
0: परमानंद जी मतलब आपका जीवन एक प्रेरणादायक एक उदाहरण के रूप में, क्योंकि आपने कहा कि गरीब परिवार से थोड़ा बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे करके आपने एक बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया है, अभी आपका बेटा बिजनेस संभालता है, और इन सब के बीच जहाँ पे बिजनेस को भी देखना था वहाँ पे परिवार को भी देखना था, वहाँ पे आप गाते भी थे, वहाँ पे आप बजाते भी थे, वहाँ पे आप डांस करते भी थे, वहाँ पे नाटक करते भी थे, ऐसा कुछ है जो आपने नहीं किया?
1: ये जो है ना रिलैक्स होने के लिए अपना जो काम का स्ट्रेस है उसको भूलने के लिए ये सब ज़रूरी है, और जो मेन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं एक पिता के नाते मैं सोचा कि संगीत में बच्चे को भी सिखाऊं और पूरे जो गांव के जितने लोग हैं जिसको सिखा सके हैं बता सकते हैं ये करूं, कारण ये एक संगीत के माध्यम से अपना धर्म संस्कृति जो है ना उसको सीख सकते हैं, जैसे भजन गाते हैं जब गाने जाते हैं तो कथा सुनते हैं, तो ये संगीत के हो गए एक माध्यम। और ज़रूरी है स्पोर्ट्स, जो चीज़ हमको सबसे पहले देखना चाहिए वो ये शरीर है, ये शरीर के द्वारा हम जितनी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी हैं, ये शरीर ठीक है तो सब ठीक होता है, तो लोग मैं देखता हूँ उल्टा करते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, अगर शरीर को समय मिले तो देखेंगे, नहीं तो पूरा छोड़ देते हैं ऐसी। तो स्पोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है, संगीत और स्पोर्ट मेरे लिए तो भगवान की कृपा है, पता नहीं कैसे कैसे ये आ गया मेरी ज़िंदगी में, तो लड़के को भी ताइक्वांडो सिखाया, लड़कों को भी संगीत सिखाया और बहुत लोगों को सहायता भी की, उदाहरण लोग खुद आके बोले देख तुम हमारे लिए उदाहरण है, हम भी अपने बच्चे को सिखाने लगे हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, हम इस उम्र हो गए हैं पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो लेकिन मैं सोचता हूँ हमेशा कि कैसा देश, कैसा वातावरण मैं अपने बच्चों और ये सब लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, तो मेरा हमेशा कोशिश रहा है कि अच्छा करें, कुछ लोग को अच्छा सिखाएं, अच्छा बोलें, मार्गदर्शन करें, ताकि वो लोग ये छोड़ के जाएं तो लगे हाँ हम कुछ लोग सीखे हैं, तो जीने में कि भाई स्वर्ग तो यही है, स्वर्ग तो कहीं देखे नहीं, तो लोग अगर खासकर माता पिता को बहुत ज़रूरी है छोटे ही से बच्चे को ये सब सिखाना है और साथ भी रहना है, ऐसे नहीं कि बच्चे को भेज दिया स्पोर्ट्स करने नहीं, मैं ऐसे नहीं था, मैं बताता हूँ, मैं जब पहली बार गया मेरा लड़का को लेने के ताइक्वांडो वो क्लब में, तो वो गुरु जो थे मेरे पहचान वाले थे जो कोच, वो बोले तुम भी आ सकते हैं, मुझे इस उम्र में 38 हो गया है मेरा, तो बोले नहीं आ सकते हैं, तब से जब शुरू किया लड़का का साथ दिया,
0: लड़के के साथ बेटे के साथ साथ आपने बेटा को सिखाया,
1: वो थोड़ा पहले छोड़ दिया, मैं कंटिन्यू करने लगा,
0: अरे
1: तो मुझे इतना अच्छा लगता था,
0: अरे वाह, तो और मैंने एक फोटो में देखा आपका पैर इतना ऊपर तक उठता है,
1: हाँ
0: पूरा आप स्प्लिट कर लेते हैं,
1: हाँ ये सब जो है ना

0: डिसिप्लिन होना चाहिए और रोज़ का रियाज जो है ना, जैसे अभी मैं बहुत क्लब में नहीं जाता लेकिन सवेरे अपना स्ट्रेचिंग करता हूँ, अपना जो बॉडी को इस तरह रख देता हूँ ताकि मुझे चलने फिरने कुछ भी एक्शन करने में कुछ समस्या न हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, सवेरे पहला शरीर को देख लो, शरीर तो आपको सही दिशा पर ले जाएगा।
1: और आप समाज सेवक भी है, समाज सेवा करते हैं?
0: ये तो हमारा कर्तव्य है, जहाँ हो सके बहुत सी जगह मंदिरों बनाने में, संस्था को बनाने में मैंने सहयोग दिया है, ये भगवान की कृपा रहा। भगवान चाहते थे कि मैं अब कुछ करूं तो उसके मैंने किया।
1: तो परमानंद जी आप सोते कब है फिर?
0: बहुत कम ही सोता हूँ सच में,
1: बहुत कम सोते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आराम मिल जाएंगे, अभी थोड़ा सा समय मिल जाते हैं सुनने के लिए नहीं बल्कि गीत सुनने के लिए। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर उसके बाद आते हैं वापस नाट्य कला कार्यक्रम में।

0: नाट्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।
1: तो एक ही कलाकार के अनेक रूप होते हैं, लेकिन एक ही मंच पर अनेक पात्र हुए भी निभाते हैं, और एक ही जीवन में इतने सारे पात्र। हमारे साथ है नंदेव सिपोल जी, परमानंद सिपोल जी। आपको क्या बुलाएं, नंदेव जी, परमानंद जी,
2: जो प्यारा लगे वो ही बोल दीजिए।
1: आप परिवार के बीच में, गांव के बीच?
2: हाँ, वो सब परमानंद से।
1: परमानंद, परम आनंद,
2: परम आनंद।
1: और इन सब को करते हुए आपको परम आनंद प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर। तो आपने बताया कि आप गीत गाते हैं, मुकेश का एक बहुत ही बड़ा फैन है, और आप नाटक भी खेलते हैं, और आप ताइक्वांडो भी करते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, और अपने अपने बच्चों को, मतलब प्रभात को, आपने संगीत सिखाया। इसके बारे में बताइए। आपने आपने कहा कि आप अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ ताइक्वांडो सीखने जाते थे, उसने बीच में छोड़ दिया कोई कारणवश, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहे। अब संगीत में कैसे उनको आपने प्रोत्साहित किया?
2: वो छोटा ही से, मैं क्योंकि मैं भी छोटा से वो ढोलक प्रसाद देता था दोस्तों को, तो मैंने सोचा कि लड़के को कुछ सिखाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ाई के साथ ये रहेगा तो अच्छा रहेगा, जब थक गया तो संगीत के साथ लग जाएगा। तो उसको शुरू किया मैंने जब 7-7 ईयर्स का था। एक गुरु था वहीं पर, एक हासिम ईडन जी को
1: लगे हाथ। जब आप बात कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में, तो अपर्णा जी बैठी हुए वहाँ पे, तो उनसे आग्रह करते हैं अगर वो गीत चला दे, प्रभात की आवाज़ का एक गीत अगर चला दे, तो उसके ऊपर हम उसकी उसकी चर्चा करेंगे ज़रूर। किस तरह से उन्होंने संगीत म्यूज़िक सीखा, इसके बारे में बताइए। हाँ बताइए।
2: तो वो गुरुजी से शुरू किए, तो बाद में मैंने क्या किया, एक संपर्क हुआ एक गुरु जो बड़ौदा है, डुलर मेहता। तो मैं उसको बोला, देखो मेरा लड़का को सिखाने का है संगीत, जब स्कूल के छुट्टी होते हैं एक महीने तक, तो तुम आ जाना मेरे यहाँ उसको सिखाने के लिए। तो वो मान गए। तो हर साल या हर छुट्टी में कभी वो नहीं आ सकता था, उसके दोस्त, उसके गुरुजी भी थे, कभी उनको भेज देते थे। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, लड़का बहुत आगे बढ़ा, बाद में MGI हो गया, वो हिंदुस्तानी वोकल जो है ना, वोकल

0: हिंदुस्तान ये इसमें भी उसका डिप्लोमा तक भी किए। तो जब पैरेलल करता था वो इंजीनियरिंग की है लेकिन वो संगीत भी सीखने जाते थे, यानी कि वहाँ यूनिवर्सिटी से होके तब जाते थे ये सीखने के लिए। तो बाद में मैं जो रामायण संत हैं वो गुरुजी स्वर्गीय पंडित अरुण जी मुझे बोले, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो जैसे JCBS का बेटर ये सब का था, तो बोले देखो मंदिर बना मैंने पहला वहाँ संस्था बना रहे हैं तो उसका हॉल बनाना है तो क्या कर सकते हो। मैंने कहा हम कर देंगे, सेवा कर देंगे वहाँ पर, ये किया। फिर मंदिर का जो हुआ ना उसका जो फाउंडेशन होता है मैंने किया। तो एक बात में मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, देखो आप इतना विद्वान हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बच्चे को आशीर्वाद दें, कुछ लिख दें ताकि एक सीडी बने, ये जो शिवरात्रि के इतना हमारे धूमधाम से होता है यहाँ पर, तो उसका सीडी हो जाए। तो बोला ठीक है, तो उसी ने लिखे। तो तब ये जो हमारे मंगेश जी हैं उसने वो उसमें संगीत डाले, तब मैं लेके गया इंडिया। वो दुलर मेहता मेरा दोस्त है बड़ोड़ा में, उसने किसी को देखे एक स्टूडियो में, तो वहाँ पर अहमदाबाद में जाकर वो उसका रिकॉर्डिंग किया। तो ये था उसका ये है। अभी मैं कह सकता हूँ पिता हूँ, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है जब मेरा लड़का गाता है तो इतना अच्छा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो एक पिता की खुशी वहीं पे होती है जब उसका बेटा मतलब प्रगति करे, आगे बढ़े, और ख़ास तौर पर अगर पिता के क्षेत्र में ही वह आगे बढ़ते रहे। बेटा का मान, पिताजी का सम्मान, बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं अब बेटे के बाद आपने नाटक में कदम रखा, नाटक के साथ साथ आपने कहा कि आपने फिल्म में भी काम किया।
0: हाँ हाँ,
1: इसके बारे में बताइए।
0: वो छोटा छोटा जो रोल है वो एक था द लॉस्ट नोट हाँ हाँ, उसका हिंदी का कैसे है मुझे याद नहीं, उसमें था। मुझे कोर्ट में कुछ बोलना था, जो पैथोलॉजिस्ट वो क्या बोलते हैं वो उस जो वो ऑटोप्सी होता है ना उसके रिजल्ट दे, यानी कि मजिस्ट्रेट के आगे बोलना है कि जो क्राइम हुआ है उसके आगे ये क्या क्या मिला, तो मुझे कोर्ट में आके बोलना था। तो ऐसे ऐसे कुछ मैंने किया था। तो आसान नहीं था क्योंकि वो जो टर्म्स यूज़ करते हैं उसमें जो वो शब्द है ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा से रहा। तो बाद में वो उसी के साथ वो ननकू जी हैं वो डायरेक्टर वरुण हाँ, उनके साथ। तो अभी हाल ही में वो गिर मिटिया दूसरा जो उसमें भी छोटा वो रोल था, वो जैसे कूली लोग आए थे हमारे गिर मिटिया लोग, तो मैं भी एक उसमें रोल था, खेत में काम कर रहे हैं ये सब ऐसे कुछ। तो मज़ा आता है राइट, समय लगता है बहुत उसमें क्योंकि एक टेक होता है दूसरा तीसरा ये वो दिन बीत जाता है। तो ऐसे ऐसे ये
1: प्रश्न मैं हमेशा सभी कलाकारों से पूछता हूँ क्योंकि वे उन लोगों ने मंच पर काम किया, उन लोगों ने पर्दे पर काम किया है। नाटक का अभिनय, नाटक की एक्टिंग और मूवी की एक्टिंग में फर्क क्या है?
0: बहुत बड़ा फर्क है। वैसे तो दोनों में अपने को डुबा देना है उसमें है, वो कैरेक्टर में घुस जाना है, लेकिन पिक्चर में रीटेक हो सकता है, नाटक में रिटेक नहीं हो सकता है। वो वन गो है हाँ, वन गो जाता है। तो जैसे फुल लेंथ प्ले है तो सबके बारी अपने फॉलो करना पड़ता है, जैसे तुम्हारा वो आया तो जल्दी जाओ। कभी जैसे रामलीला हमने की तो इसमें इतना जल्दी मुझे चेंज करके वापस आना था, जो कोई हेल्पर कोई सहायता करने, जो मेरी पत्नी साथ जाती थी मुझे सिर्फ वो कपड़ा बदलने में सहायता करने के लिए, क्योंकि पूरा ये करना है जल्दी आना है। तो ये सब ये डिफरेंस है। पिक्चर में मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा आसान है हाँ, क्योंकि गलती हो गया तो फिर से ही कर लिया,
1: लेकिन
0: हाँ वो जो नाटक है चल रहा है उसमें रिटेक नहीं है। तो
1: कभी ऐसा हुआ कि नाटक चल रहा है आपका क्यू आया, मतलब आपकी एंट्री होने वाली है तो आप अभी तक तैयार नहीं हुए?
0: नहीं, क्या हुआ किसी और को हुआ, क्योंकि सब निर्भर हैं एक दूसरे पर। वो मेकअप करने लगी, एक बहन जी थी वो टाइम ले रही है, अब हम लोग क्या करें, अब दूसरे
1: आपने हाँ, मजाक में सच बात बोल दी
0: हाँ, सही
1: मेकअप करने में टाइम
0: मेकअप करने में टाइम लग रही है, अब उसको बोले जैसे आज किसी को बोलो अरे तो क्या करें, अब दूसरे जो है ना जो हमारे साथ जो

0: एक्सपीरियंस जो अनुभव वाले कलाकार होते हैं तो वो संभाल लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक बार वो हम लोग आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो हम लोगों को कपड़ा चेंज करके वो ताइक्वांडो का वो कपड़ा चेंज करके वो वापस आना था, तो वो टाइम लगा। तो जो वो बहन जी थी वो अपने आप कुछ ना कुछ ये बोलने लगी कि ताकि समय निकले ताकि हम आ सके, ऐसे कुछ।
1: अच्छा एक बात बताइए, जब कोई एक्टर या फिर आपके साथ अगर कुछ हुआ ऐसा, आपका को एक्टर लाइन भूल गया, तो आप उस समय आप क्या करते हैं?
0: नहीं तो यही होता है कि हमको पता चल गया ना, वो तो भूल गए हैं, तो हम कुछ ऐसे करें ताकि वो उसको याद दिला दें यहाँ ये भूल गई हो।
1: इम्प्रोवाइजेशन।
0: हाँ, और किसी को पता नहीं है क्या ना, वो लोग देख रहे हैं क्यों, क्या पता है,
1: उन्होंने रिहर्सल नहीं देखा।
0: हाँ, रिहर्सल नहीं देखा है क्या आगे हैं, तो ऐसे हो जाता है, बहुत बार होता है कि थोड़ा उसमें बदलाव आ जाता है क्योंकि वो भूल गए, ये होता था ऐसे से कुछ होता है। तो ये नेचुरल है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले हैं ना वो ज़्यादा बेहतर संभाल लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे प्रेजेंस
1: प्रेजेंस ऑफ माइंड
0: माइंड ये होना चाहिए। और देखो हम लोग जो नाटक खासकर हमारे भाई जी सादा सिंह जी तैयार करते हैं ना, सब में कुछ वो उसमें होता है एक मैसेज हमारे कभी कितना भी बोलें, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ताइक्वांडो किया, ये करता हूँ वो करता हूँ, जब तक वो कर ना बताऊँ लोगों को उतना ये असर नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। तो हम लोग नाटक के द्वारा नाटक के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि देखो ये करना चाहिए, ये नहीं करना, ये करने से ये होता है इन एक्शन। तो जब ये सब होता है तो इसलिए नाटक बहुत ज़रूरी है, ये चलना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से बहुत चीज़ लोगों को सिखा सकते हैं। जो बोलने से कैसे बोलते हैं, मैं एक पिता हूँ मेरा लड़का है, बच्चा तो क्या सीखेगा, बोलेंगे कितना नहीं, लेकिन जो एक्शन कर रहा हूँ ना वो लड़का दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, तो वो बच्चा वही करेगा जो देखता है। तो माता पिता से यही निवेदन है कि देखो अच्छा बोली बोलो बच्चे के सामने, अच्छा करो ताकि वो बच्चे, क्योंकि बच्चे कॉपी करता है, वो तो खाली दिमाग वाला है, जो देखता है वो तुरंत कॉपी करता है। तो बहुत जगह मुझे मिलता है मौका कुछ बोलने के लिए, शादी है या कुछ हो ये सत्संग है, तो मैं यही उस पर जोर देता हूँ कि देखो अपने आप को कोई देवता नहीं है, हम सब लोगों में थोड़ा सा कमी ये तो है, नहीं तो देवता होती। तो क्या है, हमको कोशिश करना चाहिए कि घर में या जहाँ परिवार हैं, जहाँ बच्चे हैं, अपना व्यवहार सही करें ताकि बच्चे सीखें, अच्छा चीज़ सीखें। ज़्यादातर बहुत गलती करते हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे, क्या बोलते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये कहा बाद में तुम ही रोओगे, बोलोगे अरे ये बच्चे के परेशान कर रहा है मुझे, ये कर दिया बच्चे, ये समस्या हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं अभी जो जिसको मैंने बोला कि देखो ये नहीं करना है, ऐसे करो, आ जाओ सत्संग करते हैं, तो सुना नहीं, अपने मगन में मस्त में रहे, अभी बच्चे ही बिगड़ गए।
1: बहुत वापस आते हैं हमारे नाटक के क्षेत्र में, और मुझे याद अभी तक याद है हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि जब नाटक हम खेल रहे हैं, नाटक के रिहर्सल में नाटक का जो डायरेक्टर है वो प्रधान होते हैं, लेकिन फाइनल में ऑन स्टेज प्रधान का कोई रोल नहीं होता है, वो तो प्रेक्षक के रूप में बैठे हुए हैं नाटक देख रहे हैं, लेकिन फिल्म में डायरेक्टर ही प्रधान होते हैं, बोलेगा कट तो कट। अब ऐसा हुआ है कि आप नाटक ही खेल रहे हैं, नाटक ही खेलते खेलते आपका सब परिवार पूरा आ गया है, और बीवी कह रहा अच्छा नाटक हो रहा है घर जाके देखते हैं, जब आपने कुछ कहा बीवी ने कहा कि अपना नाटक बनकर
0: पति और पत्नी का जो शादी शुदा है रितेश जी, हैं अब पता है हर लोग बोलते हैं ना, वो शादी ऐसा है जैसे बस है और पैसेंजर।

0: है जो चढ़ गया पसंजर हाँ, वो बोलते हैं कब उतरूंगा और जो नहीं चढ़ा है बोले कब चढ़ूंगा
1: कब चढ़ूंगा
0: हाँ, तो ऐसा है। लेकिन इसमें अजस्मत जो है ना शादी शुदा जीवन में, तो ये थोड़ा समझदारी थोड़ा अपने को ये एडजस्ट करना पड़ता है तो चलता है। हम लोग मेरा तो 37 years हो गए एडजस्ट ही कर रहा हूँ आज तक, लेकिन मस्त है जीवन
1: लेकिन मतलब अच्छा है जीवन, अच्छा चल रहा है। आपको अच्छा जीवन साथी मिला है जो आपको समझे, आपके स्पोर्ट्स में भी भाग ले, आपके समाज सेवा में भी भाग ले, नाटक में भी भाग ले, आपके कार्य में भी भाग ले। अब ये सब हो गया है, मैंने जैसे कि आपने कहा रामलीला हो गई है, सावधान भी हो गया है और झनक पटक भी हो गया है, तो आने वाला कोई नाटक अभी आपका आ रहा है?
0: हाँ, खेल रहे हाँ, अब ये भी हमारे जो डायरेक्टर हैं
1: अगर बता सके तो, हाँ, तो नहीं, बता नहीं, दीजिए जरूर।
0: हाँ, एक वो कॉमेडी फुल लेंथ प्ले तैयार
1: कॉमेडी
0: हो रहा है, क्योंकि अभी देखो दिन भर लोग काम करके आते हैं थकान, वो स्ट्रेस वाला चीज बताएंगे तो मजा नहीं, उसको हंसाओ वो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है हंसना। तो मैं कई बार बोला था कि देखो कुछ ऐसा करना चाहिए, फुल लेंथ नहीं करेंगे तो 10 मिनट के 15 मिनट के लिए छोटा छोटा कुछ ऐसा करना चाहिए मनोरंजन के लिए। लोग अभी बहुत कम हंसते हैं, भाग दौड़ में इतने लगे हैं कि समय ही नहीं मिलता वो लोग को लाइफ एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए समय नहीं मिलता, तो कंपटीशन में पड़ गए हैं, ये पड़ गए हैं लोग अभी। मैं तो ये कहूँगा जितना सिंपल लाइफ हो ना उतना मस्त लाइफ है हाँ, क्योंकि जब कंपटीशन में घुस गए तो कभी बस नहीं होता, तो बस जो है संतुष्ट।
1: कभी कंपटीशन में गए
0: नहीं
1: लेकिन नाटक खेलते
0: कंपटीशन नहीं कंपटीशन में मैं गया था, वो नाटक ही कंपटीशन वो था, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो करते हैं ना हर साल, तो वो मेरे भाई जो डायरेक्टर उसी ने ये
1: किया था। जी?
0: नहीं अजीत किस्तु जी।
1: अच्छा,
0: वो एक प्रोग्राम था माधो और या क्या बोलते
1: साधो माधो,
0: साधो माधो वो भाई जी को पता है वो तो फेमस है, तो उसके साथ में कंपटीशन में गया था, ये कंपटीशन में मेरा मैं वहाँ पर भी मेरा रोल यानी कि इस तरह सीरियस वाला था, कॉमेडी कॉमेडी देते नहीं मुझे, वो तू भाषण अच्छा देते हैं
1: तो बहुत ही सुंदर। और जाते जाते कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुँच ही गए हैं, बस एक 8-10 मिनट रह गए, लेकिन जो लोग आप हमें सुन रहे हैं अभी उन लोगों को कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे नाटक में भाग लेने के लिए?
0: मैं तो बोलूंगा कभी देर नहीं है, जो भी चाहे, जो भीतर में डर होता है ना उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन देखो मुझे आता नहीं था ये सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गए स्टेज में, वो बहुत अपना जीवन में आपको बहुत सहयोग करता है नाटक कलाकारी, क्योंकि जीवन ही एक नाटक है।
1: बिल्कुल, the world is a stage।
0: हाँ, क्योंकि देखो अभी हम रितेश जी से मिले हैं तो अपना व्यवहार जो है बातचीत अलग है, बच्चे से मिलेंगे हैं, बीवी से मिले तो हर रोल कितना चेंज होता रहता है, दिन भर में कितना चेंज है, चेंजेस होते रहते हैं। तो मैं बोलूँगा बच्चों को इस क्षेत्र में डालें और खुद सहयोग दें, अब देखेंगे बस जीवन कितना मस्त रहेगा, मज़ा ही मज़ा है। तो मैं तो जितना मुझे मिले तो मैं तो मेरा तो है वो इंतज़ार करता हूँ कब कोई बोले चलो कुछ करते हैं।
1: आपको देखकर लग रहा है कि आप एक बहुत ही खुश मिजाज आदमी हैं, तो स्टेज पर जब आप जाते हैं आप तौर पे घबराहट होती है, आप घबराहट का सामना कैसे करते
0: हैं? देखो वो जो है ना जब स्टेज पर गए तो हमको पब्लिक को देखना नहीं है, हमको ऐसे करना है जैसे पब्लिक तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमको अब किसी अब हमारा नज़र इस पर जाएगा तो वो पब्लिक जो है कैसा व्यवहार कर रहा है तो वो हम पर असर कर सकता है, क्योंकि वो जो हमको उस कैरेक्टर में ढुकना है तो वो हमको ऐसा करना चाहिए कि जैसे कोई नहीं है, हम अपना नेचुरल जीवन जैसे जीते हैं वो जी रहे हैं, वो कैरेक्टर में घुस गए हैं। तो कभी हाँ कभी होता है कि हमको पब्लिक को एड्रेस करना है, हमको पब्लिक को बोलना है, तब बोलेंगे हाँ सुनो जानते हो ये ऐसे वो ऐसे, तब ऐसे होता है, नहीं तो जाएंगे आगे देखो अपना ये करो बस।
1: और आखिरी बात, जब से आपने

0: ड्रामा में, थिएटर में कदम रखा है तब से लेकर अभी तक, नाटक आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया?
1: जो डर होता है ना जीवन में, कभी भी कहीं पर जाएं, अरे थोड़ा हिस्क की चाहत होता है बात करने का, ये जब एक बार वहाँ चले गए तो कितने भी लोग हो,

0: उसमें, लेकिन वो पब्लिक में उसको कर नहीं पाते, शो नहीं कर, उसको बता नहीं पाते, कर नहीं पाते, क्योंकि वो डर है उसमें कहीं क्या हो गया, एक बार डर निकाल गया तो ये नाटक से ये सब आता है अपने आप चेंजेस अपने जो है ना।
1: बहुत ही सुंदर, तो कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले ऐसे ही आपको नहीं जाने देंगे, एक बार फिर से मुकेश का या फिर कोई भी गायक का एक गाना आपको सुना।
0: एक भावगीत है, वो भावगीत बोलेंगे या क्या, मुकेश जी का मैं सुनाता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द में

0: लिए वो जिंदगी,
1: क्या बात,
0: जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
1: परमानंद सिपोल जी, बहुत धन्यवाद इस भैन वार्ता के इस इंटरव्यू के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामना देंगे आपके जीवन के लिए। नमस्कार।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपने बुलाए, अच्छा लगा। हम हैं सेवा के लिए, कभी भी बुलाए तो हम हाजिर होंगे।
1: जरूर जरूर, और ऐसे ही आप खुश मिजाज रहिए, ऐसे ही मुस्कुराहट आप कायम करते रहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद। तो आपने लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ देते रहिए, हर सप्ताह हम आते हैं नाट्य कला नामक कार्यक्रम को लेकर, कलाकारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके जीवन का अनुभव आप लोगों के सामने दर्शाते हैं। तो हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार।

0: 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 4 वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। यूएस, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का पहला मैच आज रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये ऐतिहासिक मुकाबला मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित आस्तेका स्टेडियम में लगेगा, जहां मौसम समयानुसार 11 बजे किक ऑफ होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बात यह है कि यह मुकाबला एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक विशेष कार्यक्रम रात्रि के 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। इस बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने अपनी सहायता सेवाओं को और मजबूत किया है। टेलीफोन असिस्टेंस, जनसंपर्क सेवाओं और तकनीकी सहायता के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फुटबॉल प्रेमी वर्ल्ड कप के रोमांच का पूरा आनंद बिना किसी रुकावट के उठा सके। किसी शहरी इलाके में तेजी से कार्रवाई करना, खतरे को काबू में करना और घायलों को बचाना तथा पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना, ऐसी ही कई परिस्थितियों का अभ्यास आज वकवा स्थित पुलिस बेंस हेडक्वार्टर्स में किया गया। ये अभ्यास कार्रवाई मॉरिशस की विशेष पुलिस इकाइयों और फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षकों के बीच आयोजित तुरंत और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था। इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई, तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत बनाना है। आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना की एक विशेष यात्रा पर 52 मॉरिशस श्रद्धालु हिमालय की ओर रवाना हुए हैं। वे भारत में आयोजित होने वाली पवित्र चार

0: धाम यात्रा में भाग लेंगे जिसे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु उत्तराखंड के चार पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना की जांच को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजनों तक ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक दुर्घटना के कारणों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट के कुछ हिस्सों के सामने आने के बाद पायलटों की भूमिका को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर पायलट संगठन, कुछ विशेषज्ञों और के परिजनों का कहना है कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। जुक्रे रोड नोत्रदाम में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की जगदीप देबीदीन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें परमानंद के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी भानुमती देबीदीन के मकान जुक्रे रोड नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: NBC Radio.
5: RM3

0: नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आज हमारे साथ हैं कादेर कोदादीन, दीपशिखा और ये प्रोग्राम शीतल लुबिन द्वारा निर्मित किया जा रहा है और ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट सेफ्टी, अर्थात उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता। वैसे तो ये विषय क्यों चुना गया है, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या, हमारे जो दैनिक जीवन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हम बोल सकते हैं कि प्रतिदिन हम लोग खाद्य पदार्थ, खिलौने, विद्युत उपकरण या फिर घरेलू सामान या फिर सौंदर्य प्रसाधन, ये सब हम लोग उपयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि इस इन सारी चीज़ों की जो सुरक्षा, उसके हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इन्हीं पहलुओं पर आज की चर्चा रखा गया है। और ये प्रोग्राम हम लोग हमारे साथ दो ऐसे अतिथि हैं जिनसे आप लोग भली भांति परिचित हैं। आप हैं श्री सूरज लाल बिहारी जी और आप हैं श्री विशाल सिंह लालमन जी। आप दोनों का स्वागत है। हम आप कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अधिकारी गण हैं ये दोनों। और जैसे कि हम बताया गया कि आज हम प्रोडक्ट सेफ्टी पर बात करेंगे, तो पहला जो प्रश्न आवेला कि जो न प्रोडक्ट सेफ्टी जो न एक अर्थ का है, ओकर मतलब कौन सी है लालमन जी?
1: हाँ, प्रोडक्ट सेफ्टी का है ये मान लो एगो प्रोडक्ट एगो आइटम बा ओके सुरक्षा सुरक्षित चाहेला हमने के ग्राहक लोग खातिन कहे खातिन नहीं सकब सा हमने के देश में एगो ऐसन प्रोड्यूस आने जोन हमने के ग्राहक लोग के हानिकारक हुई तो हवे खातिन हमने के चाहेला जोन जोन प्रोड्यूस आवेला हमने के देश में हमने के ग्राहक लोग के चाहे सुरक्षा
0: तो इका है जरूरी है। सूरज
2: बिहारी, इका है हमने के जरूरी है प्रोडक्ट

0: सेफ्टी पहला हमने के जन ग्राहक लोग के लासौते पहला अच्छा रही के चाहे एगो प्रोड्यूस सेवी करब अगर लासौते के डिट्रीमेंटल रही खराब कर दी तो नहीं अच्छा रही। दूसरा हमने के जिनमें इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि एगो चीज़ खरीद ले हुई जब कुछ हो गर हुई तब तोरा पेजी हुआ तो यानी कि कुछ खरीद ले होगा कुछ जर गर बा तो देख बा पैसा बिला दिल होगा। और तीसरा हमने के जन बा जिनमें हमने के बाजार में मार्केट में हमेशा अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे एगो स्टैंडर्ड के पूंजी बेचाए हमने के देश में ये कारण हमने के प्रोजेक्ट प्रोडक्ट सेफ्टी जो बा परम आवश्यकता बा। और हमने के लॉजिक देखते देखते गए कि राजा कौन पूंजी ज़्यादा बेचाव होता और अगर खराबी बा किस नहीं बा तो वो पूंजीवा डाल दिला जाए हमने के रेगुलेशन में जिनमें वो कोई MSB में एगो स्टैंडर्ड हमने के मॉरिशस में बा एगो मॉरिशस स्टैंडर्ड ब्यूरो वहाँ पर एगो स्टैंडर्ड है हर पूंजी के जितना बा वो वहाँ पर ही पासे होला एगो सर्टिफिकेट कन्फर्मिटी मिलेला तब विदा कर ले जाए मौसम में।
1: तो दोनों जना तो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स होवन जा तो ई दोनों के यही काम है।
2: एगो एगो एगो एगो एग्जांपल बा मान लो एगो सप्लायर बा मान लो एगो सप्लायर एगो जिसो एगो इलेक्ट्रिक फैन आपूर्ति करता हाउ इलेक्ट्रिक फैन वा ऐसे ही नहीं है हमने के मंडी में नहीं आवेला उसने ही एगो एग्जेसिस का इलास हमने के मंत्रालय के द्वारा MSB के सहयोग से एगो जैसे बोली लासा सैंपलिंग हमने जाप से हो कंटिन्यूवा में से हो सौ इलेक्ट्रिक फनवा जैसे एग्जाम्पल लेनी हो इलेक्ट्रिक फनवा ले के हमने सुपरवाइज करब सा तो हमने ओके ले जाप सा MSB तब MSB हो जा हो इलेक्ट्रिक फनवा की सैंपलिंग करी अब देखी कैसे अपन स्टैंडर्ड जैसे बोली लासा मोशन स्टैंडर्ड एनफोर्स करके वो लोग के कानून है वो लोग जनियन सा कैसे कौन ईजो कौन MS सेवी करियन सा तो हाउ लापागीवा की तिस्ते करी जब तिस्ते हो जाए तो वो लोग एगो सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी दे जब हाउ सब सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी वा दे दे वो हमने के मंत्रालय में विदा करी तो हमने देखा सा हाउ कन्फर्मिटी रिपोर्ट हुआ जे हाउ ईजो रिक्वायरमेंट वा मीट कर लग यानी के हो तेसवा पासे होल तो हमने हो कंटिन्यू रिलीज कर दे वापस
1: मतलब ई जरूरी ही सर्टिफिकेशन ऑफ मॉक वा जरूरी
2: हो सर्टिफिकेशन वा जे नहीं मिली हो ओके जैसे बोली ला सर शिबक न तो डिस्ट्रॉय करते वापस हो जैसे भाई बोलन हमने के देश में चाहे ला क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे तालेवा भाई बोलन हमने के लक्ष्य क्या है हमने के ग्राहक लोग के लासौते हमने के ग्राहक लोग की सुरक्षा हमने के ग्राहक लोग के जैसे भाई बोलन इकोनॉमिकली वो लोग के चाहना है सैटिस्फैक्शन वो दे तो हवे खातिन है सब एग्जेसिस हमने के मंत्रालय करी लंजा जमे हमने के ग्राहक लोग के सुविधा और ही राहत मिली।
1: अच्छा
0: इस कारण हमने के जितना लॉजिक जो पोते कर जाला ना तो MOA लगे वहाँ पर ब्लॉके कर दे जा कोनो लॉजिक जो हमने के लालिसवा में पर रहता जितना हमने के प्रोडक्ट जो रिक्वायर करे रहा वो सेफ्टी वा
2: HS कोड वा
1: अवे ब्लॉके वा माने के उधर रखे रहे जाओ
0: रखे लेन जाए जब ले हमने जा करके हो एगो सामी जैसे भाई बोलने ना एगो सामी के साइज कही ले जा सर्टिफिकेट मिल जलबा तब खोली ले जा हमने के बाजार में मार्केट में आवे के सकल जाए खरीदारी करे
2: अभी हाल ही दिखबा और ये गो एग्जाम देव अभी हाल ही दिखबा हमने के कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट रेगुलेशन में गैस वाटर हीटर के एगो कानून आलबा हाउ कानून वा काहे होल बस कि गैस वाटर हीटर से जाने कार्बन मोनोऑक्साइड लिबेरे होला तो हमने के ढेर जैसे भाई बहन के वो लोग के थोड़ा सुन दिक्कत हो गल दिक्कत हो गल बा उसे तो अभी हला हमने कानून में अमानमल आनी सा उकर में चाहे ला ओब्लिगेटोरी में एगो कार्बन डिटेक्टर कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर जैसे बोली ला सा तो हवे खातिन हाउ प्रोडक्ट सेफ्टी वा खातिन हमने कानून आमादे करी ला सा जमे सकब सा हाउ जो न्यू चैलेंजर्स आवता और हमने के ग्राहक लोग के सेफ्टी खातिन सुरक्षा खातिन हवे हाउ कानून वा में बदलाव अनालबा।
1: तो ये आजकल देखा था जा कि सब कोई खरीदारी करे लन सा पर जब खरीदा तो ओकर क्वालिटी ओकर क्वालिटी पर उतना ध्यान नहीं देवे लन जा
2: हाँ तो हवे खातिन हम मांग करब सब सब जितना हमने के ग्राहक जब खरीद कोनो चीज है कोनो चीज खाली है जो कानून में बा नहीं हमने कोनो चीज खरीदारी करब जा तो पहला देखिए ओकर ईजो स्टैंडर्ड ओकर रही एगो से रहेला सर्टिफिकेशन अफ यूरोप यूरोपियन सर्टिफिकेट जैसे बोलिला छ है सब चाहेला देखे के हवे जब क्वालिटी देख कोनो एगो एगो से

0: अमनी जब जब मान ला एगो फ्रीज एडवांस जाते हुए किन बात है एगो जैसे फान बोली ला सा ओके ओकर सर्टिफिकेशन जी मंडी में आल ओकर सर्टिफिकेशन में गा तो ऊ सुरक्षित है हमने के ग्राहक लोग के। अब मान ला एगो खिलौना किनत हुआ खिलौना हो के सर्टिफिकेशन मिल जाला बाकी हम मांग करब ग्राहक लोग से अब जब खरीदब खिलौना ओकर इंस्ट्रक्शन देखिया अपन लाज देखिया अपन जुन जुन कैसे असेंबले होला ओकर इंस्ट्रक्शन देखिया है सब तोरा हम लड़का के सुरक्षा खातिर चाहेला है सब करे के
1: ये सब चीज वन जन आवेला तो कौन संस्था के अप्रूवल देवेला मिनिस्टर वे कि दूसर
0: नहीं जैसे बोलनी तालिया हुआ हमने के एगो जैसे हमने मंत्रालय मिनिस्टर कॉमर्स और एमएसबी संगे काम करी ला सा जमे सकब सा हमने के ग्राहक लोग के सुविधा दे और सुरक्षा वो करे बस कि वो लोग लगे सब जितना टेक्नोलॉजी बा वो लोग संगे जैसे सेफ्टी रिक्वायरमेंट रेगुलेशन वो लोग वो के बा वो लोग के स्टैंडर्ड्स है वो लोग के कन्फॉर्मिटी स्टैंडर्ड्स है तो हवे खातिन हमने वो लोग संगे कोलाबोरेट करके काम करी ला सा जमे हमने के ग्राहक लोग के जैसे बोलनी सा सुरक्षित हो
2: जाए लेकिन ये यही सलाह से कब जाते हुए ट्रेड हमने के एयरपोर्ट आते हैं वो लोग के जब एयरपोर्ट करते हैं जब पहुंच भी जैसे भाई बोले ना कालीते पहुंच भी एयरपोर्ट करिया जा जब मैं यहाँ आए तो कन्फॉर्मिटी मिल जाए हमने के और लोगों के लाभ होता पैसों मिले लोग हमने के ग्राहक लोग के सुविधा रही अच्छा कारीते चीज मिले था खरीदारी कर अब जे नहीं पासे होल बा हो पोजुआ नहीं पासे होल हमने के कन्फॉर्मिटी के कितना रिक्वायरमेंट्स बा नहीं मिलल तो हमने के बा सरकार हमने के लालवा बा हो पोजुआ के शिब्बा कर दो अब जा और पोजुआ के डिस्ट्रॉय कर दो तू हमने के नाश कर दो तो काहे सब कर बजा एयरपोर्ट आते हैं यहीं जा तो निमन से एवेस्टी करी सर जैमें तोहरों गुडविल वा रही ना कि एयरपोर्ट आते हैं जितना हई इमारत के चीज़ अच्छा बा और हमने को ग्राहक अपन चीज किरने बन जाना वो लोगों सेटिस्फाई हो जाए अंजा ऐसे जैमें दोनों बगल के एगो बैलेंस हो के चाहिए एयरपोर्ट आते हैं देखा और ग्राहक के भी
0: होगा एक हला होल बा नाम नहीं लियो अब ए सप्लायर एगो एगो आइटम अनले रहल जो थोड़ा डिफेक्टिव रहल तो वो हमने के मंत्रालय के एफओ में कर लन तो हमने रिकॉल कर दे ला सा रिकॉल जाने के सब ब्रह्मास दे ला सा मंडी में तो हमने के मंत्रालय खाली अकेले नहीं दूसरा दूसरा मंत्रालय जैसे बोली ला सा स्टेक होल्डर्स हमने सब प्रोजेक्ट रिकॉल कर दे ला सा अभी गलत दिख थोड़ा होल एक महीना ये दूध के विषय में हमने सब रिकॉल कर दे ले से और हमने जाए ला सा मार्केट सर्वेलेंस करी मार्केट सर्वेलेंस करे तो हवे जो प्रोडक्ट सेफ्टी हुआ है हमने के मंत्रालय एगो महत्वपूर्ण रोल खेले लन तो हवे खातिन हमने के ग्राहक लोग के सुरक्षा खातिन और जमे वो लोग सकियन से अपन खरीदारी सुरक्षित करे
2: अब तेसा कही ले जा जैसे भाई बोले ना कॉफ़ी वहाँ मिल गल बा तब जब प्रयोग होता तब देखा तेसा मजे पोजुआ को मजे उतना डिब्बा पे फिट जब पोजुआ खाली सेवी कर ले उतना महंगा के चीज नहीं अच्छा बा तब रिकॉल बा कही ला जा कि पोजवा ने अच्छा बा तो एयरपोर्ट आते हो हमने के जो जो बनेले हो जा मैन्युफैक्चर हो
1: कौन क्राइटेरिया चाहिए अपना के
0: एयरपोर्ट आते हैं वो जब वो अपन टेस्ट करी अपन अपन से अपन टेस्ट करी जे जे जे वो कैसे ओकर ओकरो रिस्पांसिबिलिटी हो हा ओकरो रिस्पांसिबिलिटी हो हा तो हमने के मंत्रालय जैसे बोली ला सा अथॉरिटी के चाहे ला जनाई के जब अथॉरिटी जन जनियन जा तो वो लोग एगो ऑपरेशन मोती करियन सा जमे सब रिकॉल करी
2: यानी कि खरीदारी समय ग्राहक लोग के कौन चीज़ के वेरीफाई करे के चाहिए जैसे भाई बोले ना पहला ओकर सेफ्टी मारक रही हूँ मैं एगो मार्क रहे ला सेव है कौन चीज़ कॉफी मीते बा कहाँ पर इंस्पेक्ट लेबलिंग वा के लेबलिंग ओकर दिले बानी मन से और ओकर क्वालिटी वो देख उठाव के देख तब लचत आ निमन से नहीं सोलिड नहीं लौकत आता नहीं खरीदे के चाहिए सब देख करके तब हमने के सकब जा कोनो चीज़ के खरीदारी करके विशेष करके घर के घरेलू सामान जितना बन डोमेस्टिक अप्लायंसेस बा है सब देख करके निमन से ओकर मारक देख सब ओकर रिव्यू देख तब खरीदारी कर जाए
0: जैसे हरदम बोली जा सर अभी के लिपोक में जे जे हरबरी में खरीद ब जा तो नहीं अच्छा है हम बोलब अभी के ज़माना में स्मार्ट बाइंग कर जमे सक ब जा एगो एगो जमे अपने सुरक्षा कर अपने सुरक्षा कर
1: तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए कोनो कानून बा
2: ऑनलाइन खरीदारी के लिए अभी ले हमने के कम्मा होता अभी कम्मा बनावत है जा लालवा बस

0: मोरिस में हम ऑनलाइन के लालवा बनावे के बड़ी हमने के पड़ताल ढेर चीज जांच पड़ताल करे की हमने के कंसिडर करे के ढेर फाकती है बा मोरिस में कारण काहे पसी हमने कुछ नई प्रोजेक्ट कैला जाहिया पर सब एपोटिव करे के तब जे ऑनलाइन करब जा कुछ समस्या हो गल हो तो एपोता दूसर देश के पर संपर्क करे के तो कठिनाई हो जाता हमने के कारण बनाते हैं जाए नियमन से जेमे ग्राहक लोग के सब जा सुरक्षा पहुंचावे
1: कानून हुआ काहे देरी होता बनाए के बस की जस्ती न्यू चैलेंज ढेर चैलेंज आवा था और हाउ ए आई के जमाना है जमाना चलाल बा और हाउ खातिन तनिसुन देरी हुआ था हाउ कानून वहाँ आई की
2: तो दोनों पर जिन ऑनलाइन खरीदारी होला इमे लावंताज वो बा
1: लावंताज बा नहीं बुलब नहीं बा बाकी चाहे ला विशेष तौर पर लावंताज दी लावंताज बा हाउ हाउ बुलब
0: घर बैठे दो तीन को मगा था एक दिख ली बलोची ने काहे की वजह से कंपेयर करे
1: प्रीबशल बशल डाउन से बा कंपेयर करे है सब बा नहीं बुला था बाकी जैसे भाई बुलन हाउ रिव्यूआ ओब्लिगेटोरीमेंट चाहे ला देखे के कैसे मत ना एगो एडवर्टीजमेंट देख लेला और टिकटॉक में आज खरीद ला कल दिखत हुआ पाजवा नहीं
2: बस की हो वे उमे जो सस्ता दाम में बेच ला सिर्फ क्वालिटी कबो कबो
1: तो हवे खातिर हम बोलब जे क्वालिटी खोजब जे निमन एगो निमन क्वालिटी वही खोजब तो डिरेंजी करके जाइया एगो प्लस पकड़िया देखिया अपन हाथ से अपन मन से देख बस से ये करबा तब जाइया दिखा अपन खरीदारी करबा कि नहीं
2: तो हम अपने श्रोताओं और दर्शकों से मांग करते हैं इस विषय से संबंधित आपके पास

0: इस प्रोग्राम में आप दोबारा स्वागत कर रही हैं आप लोगों का, और 402-808-5 पर बेझिझक आप हमें फोन कर सकते हैं किसी भी, मतलब आपके पास कोई सवाल हो या फिर आप कोई विचार भी देना चाहेंगे। आप बेझिझक हमारे साथ हैं कादिर, दीपशिखा और शीतल, और आज इस स्टूडियो में जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं श्री लालमन जी और श्री सूरज लाल बिहारी जी। तो प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी कुछ क्षण पहले हमने बता लिया ऑनलाइन खरीदारी पर ई बहुत सावधानी से ई खरीदारी चाहना करी के कहे कि इमें वारंटी वो नहीं मिली जी अगर ऑनलाइन खरीदारी कर पाता।
1: हाँ पक्की, और दीपान हो जी जी हो ऑनलाइन खरीदत हो एगो मगाजें बा एगो सब उकर एगो जैसे बोली ला से एगो फिजिकल ट्रेड प्रेमिस बा सकेला वारंटी वा मिली, बाकी जे इंडिविजुअल से किनबा उमें गारंटी नहीं बा, उमें सक बजा सकी दे सकी नहीं दे उ तुहर तुहर डिसीजन तुहर फैसला है, बाकी एगो रिस्क वो है जे टूट जाए तो कहाँ जाए बनाई तो हम सब चाहे ना देखे कि जब ऑनलाइन खरीदारी करब तो हवे खातिर हम बोलब जे खरीदारी करब हमेशा एगो ऐसन जगह खरीदारी करिए जहाँ एगो फिजिकल ट्रेड प्रेमिस बा, बस कि मान ला एगो एगो मुश्किल में पड़ गई ला टूट गल कोनो, अब कंप्लेंट कर दिला हम नहीं लगे एगो एगो शिकायत दर्ज कर दिला हम नहीं लगे तो हमने के मुश्किल पड़ जाए हो हाउ सप्लाई हवा के हाउ थ्री दवा के खोजे तो हवे खातिन जे हाइए सामान वा एगो

0: जोन एगो फिजिकल ट्रेड प्रेमिस रही तो हमने के फैसिलिटी हो जाए हो जा जाए के और कुछ हो रही तो हमने सकब से रेसूद कर दे तो हवे खातिन जितना ऑनलाइन शॉपिंग करब तो चाहेला देखे के और पूछे के जैसे हरदम भाई बोलेलन चाहेला हो रिव्यूआ देखे के आगे कि जे नहीं दिखब तो खरीदारी कर दिला तो बाद में मुश्किल हो जाए
1: पहला जो गलती कर दिला जा पहला सामान्य गलती जो हो जाए ऑनलाइन शॉपिंग के जो होकर जो हमने के जो रिटर्न पॉलिसी देखे के चाहिए एक ले ले बाकर पहुंचो सकल जाके तूने करे कि नहीं दूसरा ओकर गारंटी वा बा जैसे भाई बोले गारंटी बा कि नहीं में बा हमने के जो आइटम जो प्रमोशन में बा हो भी लॉजिक वा आवता कि दूसरा लॉजिक आवता अबे अस्ते जो बा हमने के पे कर दिला जा लॉजिक वा हटान करते हैं ऐसा नहीं आवता लॉजिक वा भी तो जहाँ पर जो बा पे जो डिलीवरी आवता लॉजिक वा तब पे करिए देख लो परख लो नहीं अच्छा बा घुमा दो प्लस ऐसा कौन छुआ देखे के चाहिए पहला तब हमने के सक नहीं बोल से मना नहीं करते हैं जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करे के लेकिन देख नहीं मन से लेकिन पसके हमने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पर आबेला जब कुछ खरीद नहीं सर तब हमने के लगे आईब कॉम्प्लेट करब कुछ बोलब सकब जा सहायता करब से हमने लेकिन जहाँ तक हमने के हतवा बांध देब जा सहायता करी
2: जैसे अभी कुछ पहले बोला कॉम्प्लेंट शिकायत अभी कैसन कैसन शिकायत आवता
0: अभी अनेक तरह की आवेला जैसे कोनो कोनो चीज टूट गल बा जिसो एगो फ्रिज दिया किनला टूट गल बा तो हवे जिसो कुछ नहीं करत हवन सा तो ऐसे ऐसे शिकायत आवेला और ये
2: ठोस
0: हाँ जी
2: ठोस
0: हाँ अब कोनो बुटीक में दाम नहीं बा कोनो प्लस गईला तो हाउ सिपा तनी सुन जस्ती पे ये कर दिला लाकेस में हो जा इस पास 100 रुपया रहल है जा 100 एन इस पास 100 रुपी पे ये कर इलग तो है सब ऐसा शिकायत आवेला
1: अब जितना दाम को फिक्से हमी के सरकार के हवे दम्मा में बेचे के चाहिए जहाँ तहाँ एक दम्मा से जैसी बेचाया तो हमने के कॉम्प्लेट दे देवलन जा तब जाइला से चिके करे हमने के इंस्पेक्शन सबरो बढ़ती मोरिस में हमने के इंस्पेक्शन इंस्पेक्टरों के विदा कर ले जा चिके कर ले जाला और मौके से वेंस हो कर ले जा देखे जब कौन लॉचिक जाता जस्ती कौन चिके कम थी बा हो सके वो रापो बना करके तब लोग अपने को एगो डिसीजन ले जाला मौजूदा कानून के अपग्रेड कर ले जा
0: और जैसे भाई बोलन हम सब जितना सुपर मौसे बा जितना ई पी एम मौसे बा और जितना बुटीक तबाजी सबा वो लोग से मांग करब जितना फौजी कंट्रोले हुआ था जे कुछ दमवा नहीं जनियन सकियन स टेलीफोनी करी हमने के मंत्रालय एगो एगो यूनिट है प्राइस फिक्सिंग यूनिट उबिया सकियन स pfu.gov.mu.org में जाके हौ दमवा चेक करे कितना फिक्से होल बा त हवे दमवा आफिशे करिया जमे मान ले गो शिकायत मिल गल बा हमने के मंत्रालय में जब हमने जाप से हो जा जे दिखब सा दमवा में डिफरेंस बा जे जो दमवा ढेर बेचत हवन सा तो ऑटोमेटिक एगो कॉन्ट्रावेंशन हो जाए तो हवे खातिन हाउ कॉन्ट्रावेंशन वा एविटे खातिन तो हाउ प्रीवा फिक्से चेक कर दिया पीएफयू से
1: वो हमेशा बोला जा हमने के मॉरिस में 3 प्रकार के दमवा बा पहला को फिक्से दाम जैसे रोटी बबन गाज लेसेंस जैसे सब फिक्से है एक से ज्यादा नहीं बेचे के चाहिए कॉन्ट्रो मोशन हमने के जनाए के चाहिए हमने के लगे सब अपन नमो नहीं बोला हमने के नीमो एन विच सैंक में 460-25-0 हमने के लाली नॉर्मल सोने कर हमने इंस्पेक्शन के इंस्पेक्टरों के भी दा कर जा एगो दाम जैसे भाई बोले एगो मैक्सिमम प्रॉफिट देवल जाला जितना कान फूट बा जितना हमने के सब एगो मैक्सिमम प्रॉफिट देवल जाला हर ये दमो नहीं जन बजाना तो जैसे भाई बोले हमने के सीध बा हमने के पी एफ यू में जाइब अभी नहीं सक जा चिके करे नहीं जाना था जाना
2: हमने कहा कि सुने करा सब दाम
0: दिखबा जा सब्सिडाइज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सब्सिडाइज फॉर कंट्रोल कमोडिटीज दिखबा सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स वो बा और दिखबा जिंदा जितना दाम बा फिक्से बा हाउ पी एफ यू वहाँ में मिल जाए हाउ फैसिलिटी कर दे वेला सब बा हाउ में जे कोनो कोनो दिक्कत वो हो सक बा सुने करे एंड विच सैंक जैसे भाई बोलन हमने सिखा दे वापस बोल दे वापस कहाँ कहाँ सकियन सर हमने एडवाइस कर दे वापस सलाह मशवरा कर
1: बस सरकार जिफो करता जाना थे जा सब चीज मोटे होता हमने को खरीद दी ला जा लेकिन इतना ली सरकार में कि सिपसी दालत हमन जा जिनमें सकब जा जितना खाद्य सामान बा सकब जा खरीदे और एगो तीसरा पका के दाम जो लिबरलाइजे बा जिनमें एगो एगो सकल जाए प्रमोशन डाले यहाँ पर जैसे जमा लाइक दाम बा हुआ जैसे महंगा बा

0: हमनी के स्वा में बा कौन सुपे मौसे में कौन बुटीक में जई बजा तब खरीदारी
1: जैसे भाई बोलन प्री लिबरालिजे सॉफ्ट ड्रिंक के दाम लिबरालिजे है सॉफ्ट ड्रिंक के दाम लिबरालिजे काहे एगो शिकायत दर्ज कर ले रहनी सा ईमेल पर है ईमेल पर तब देखत है एगो कोका एगो जैसे एगो सॉफ्ट ड्रिंक एगो सॉफ्ट ड्रिंक है जा इतना बेचत रहल हौ जा ढेर महंगा बेचत रहल तो हवे खातिर हौ दमवा लिबरालिजे है वो फिक्से नहीं है
0: कॉम्पिटिशन रही बुटीक में तो हमने के स्वा में बा कहाँ पर सब जा चयन करे कहाँ पर जितना अच्छा सब जा खरीदारी करे यानी कि यहाँ मॉरिशस में ना हमने के सरकार हमने के जेफो करते हवन जा जिनमें हमने के जितना ग्राहक लोग के सुरक्षा होवे और सेकेंड जा खरीदारी करे खरीदारी की क्षमता जिनमें बढ़ ही तो रहा बहुत ऐसे प्रयत्न करते हैं जहाँ हमने और जितना पौधे सेफ्टी हुआ के बारे में देखे थे वेलफेयर बोली जा मॉरिशस को वेलफेयर स्टेट है यानी कि सुरक्षा कही ला जा खाद्य सामान की कुछ कमी ना रहे आज में हमने की सेफ्टी भी रही हमने की सुरक्षा हो गई कोनो चीज़ खीनत है जा घरेलू सामान जितना बा हमने के चाहे जाने के कौन चीज बा घरेलू सामान में हमने के जितना बा हमने के बाढ़ के सुखाई के ऐसा हवे में आवेला पूर्वक सेफ्टी ऐसा जेट नहीं आवेला हमने के मार्केट में
1: जैसे जैसे एक छोटा चीज आज कर जैसे फ्रिजिडेयर बा माइक्रोवेव बा जितना जितना इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अप्लायंसेस बा इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस हाउ से सब तिस्ते होला हमने के मंडी के आय में आय के आगे में तो हवे खातिर हमने के जितना ग्राहक लोग बा जब खरीदारी करियन सा नहीं बोली ला नहीं सेफ बा बाकी चाहेला पूछे के
0: टेबल लैंप जैसे हमने घर के टेबल लैंप ब्री के हो जो साधारण
1: ऐसे जरावत हो
0: कुछ
1: हो जाए
0: हानिकारक रहते नहीं अच्छा बा ये सब हमने के तेस्ते हो सब पोजवन हमने के लालवा में आजूते कर रहल बा जैसे हाल ही में हमने के गैस वाटर हीटर आल बा जितना तोरा रंज हो रहा हमने के मौसम में तब पोजुआ जब भी हमने के टेस्ट नहीं करल जाए ओकर सर्टिफिकेट नहीं मिली तो हमने के मंडी में नहीं विदा कर ले जाए और हमने के सामान्य रूप से खिलौना लेकर के खिलौना सब तेस्ते होला जैसे हमने के घर बनावे के ईट हमने के फेराई
1: लोहा
0: सब तेस्ते है पाइप जितना बा हमने के जो
1: प्लम्बिंग टेस्टे करी ला सा जब मैं और औरी जब दिग्बा जब बनाने के वक्त में ढेर ढेर पिता आने सा फायर खाकर जैसे पटाखा बोली ला सा हाँ वो टेस्टे करी ला सा उकर उकर उकर टेस्टिंग तनी सुन लंबा है काहे खातिन वो में SMF भी आवेला MSB भी आवेला तेरे में तब हाउ टेस्टिंग हुआ हाउ सैम्पलिंग हुआ होला जमे सक जमे हाउ हमने के ग्राहक जब हाउ पटाखा हुआ बजाए तो वो लोग सुरक्षित रही
2: ऐसे जन इम्पोर्टेड चीज आवेला हमने के देश में ऐसे नहीं आवेला बहुत जांच पड़ता यही हमने के ग्राहक लोग के हमने के उपभोक्ता लोग के चाहे जाने के ध्यान से अपन खरीदारी के चाहे ना करे के तो मिनिस्टर देने से कौन कौन कदम लेवला जनता के जनावे खातिर की सब अभी ये हमने एगो
1: जैसे अभी हमने एगो जागृति अभियान हुए चलावा था सर जब हमने के ग्राहक लोग जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम बोली ला सर हैला एगो एगो टिप और हमने जाई ला सर सगरो सगरो लिकुल में जाई ला सर लिकुल में जाई ला सर सोशल में जाई ला सर हां तो जैसे ब्रोशर वो भी दा कर ला सर कोनो कोनो सुनो वो करी ला सर करेलन सर मंत्रालय में
2: ऐसे अभी बोला एगो सामान देख ला सी ई लोकल तो सब कोई नहीं जाए दिखे इस बार ई में बा वही से हमने उन लोग के जनावत हैं जाकि ई चाहे ध्यान से देखे के परखे के तब एक चीज की नहीं हाँ
1: तो हवे खातिन हमने जागृति अभियान चलाए ला सर जब उन लोग के अवेयरनेस जगाई के जब कोनो चीज खरीदियन सा तो सोच समझ के खरीदियन सा हवे खातिन हमने के ग्राहक लोग से मांग करब ऐसे नहीं खरीदिया कोनो सोच कोनो विचार से कोनो सब सोच विचार से खरीदिया जा जे कुछ नहीं जनब हमने के मंत्रालय में सुने कर हमने सलाह मशवरा दिया
2: सा फैसिलिटे मिलता मंत्रालय देने से कि टेलीफोन कर
1: 1-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8

0: उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और हमने के जो इन मेहमान हैं अब हम ये पूछब जा कि कौन कौन सामान मिनिस्टर दिने से सहयोग मतलब कंट्रोल मिलेगा
1: हमने के जितना प्रोजी जो बा हमने के सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स में पड़ेगा जैसे बोली जाते जा पहला हमने के घरेलू सामान यानी कि हमने के घर पे जितना सामान बा एगो लालिस पाओ में हमने के जितना हमने के रसोई घर के जितना सामान बा हमने के माइक्रोवेव बा
2: इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस
1: जितना चीज हमने के जितना इलेक्ट्रिक सेवी करे वाला चीज हमने के ओकर सेफ्टी रिक्वायरमेंट सा ढेर पोजी में हमने के लेके जाएला जा ढेर पोजी जरे जो ने पोताते हुए है वो अपन लेके लेके जाए बस एगो सर्टिफिकेट हो के चाहिए तब सखी बोले जब बेचत हम हमने के ग्राहक लोग से तब सखी बोले हमने के सर्टिफिकेट बा हमने के प्रोजी क्वालिटी के बा
2: हमने के
1: इजो बा है सब बा तब हमने के सकब्जा खरीदारी करी यानी कि घरेलू सामान यानी कि किचन के कितना रसोई घर के जितना चीज बा उनमें सब चीज आवेला हमने के लॉन्ड्री के भी हमने के वैक्यूम क्लीनर जो नितवाई करे जा है सब प्रोजी बा हमने के एयर ड्रायर बा है सब हमने के एयर क्लीपर हेयर ड्रायर हमने के सब बा हमने के टेबल फैन है सीलिंग फैन भी आवेला है सब में बस ये सब देखल गल बा हमने के ग्राहक लोग के समस्या हो गल बा जहाँ पर गिर गल बा तब लोग के देखल जला ओकर फरकल जला ओकर सर्टिफिकेट मिली तब हमने आनी ला मंडी में
2: एयर कंडीशन वो है एसी जोन बोली ला सा एसी वो ओकरो सिर्फ टेस्ट होला जमे सकी हो सप्लाई मंडी में थाले
1: तब आवेला हमने के जितना बारे हो रहा चीज जितना हमने के लाइटनिंग है
2: लाइटनिंग
1: ग्लोब बा हमने के है सब हमने के आवेला चेके कर अगर जाला तब हमने के सकब्जा बाजों में आवेला अब हमने के इलेक्ट्रिक में के वायरिंग भी आवेला काब जितना
2: इलेक्ट्रिक केबल जो
1: सब चीज हमने के सर्टिफिकेट मिली तब मंडी में
2: जैसे जैसे मान लो एगो सप्लायर इलेक्ट्रिकल एक कंटेनर काब अनले हवन इलेक्ट्रिकल केबल जैसे बोलीला सर तो ऐसे ही नहीं आवेला जैसे पहला बोलनी ओकर एग्जर्सिस जैसे सैंपलिंग के एग्जर्सिस बा हमने हाउ सैंपलिंग वाल हाउ जितना इलेक्ट्रिक केबल बा हाउ सब के सैंपल लेवब सर सब के सॉन्स एक्सेप्शन सब लेवब सर तब MSB में छोड़ देवब सर तिस्तिक हुई का दिन जब हाउ तिस्वा के कन्फर्मिटी वहाँ मिल जाए तब हमने हाउ कंटिन्यूवा रिलीज करब सर तब हाउ कबुआ सकियन सर मंडी में डाले
1: यानी कि पहला जितना हमने के घरेलू सामान जितना इलेक्ट्रिक बा सब जितना अप्लायंसेस भी बा 90% ई में आवेला सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फिर एगो सर्टिफिकेट मिली तब मंडी में बिदा हो जाला अब आवेला लेकर के खिलौना उनमें खरीदारी पहले हमने जाके देखी ले जा हमने के कंटेनर में हुआ पड़ी मोबाइल लगे जाके वेरीफाई कर एन पॉइंट निकाल के देखी ले जा उनमें ओकर लाज डाले के चाहिए वार्निंग मिले के चाहिए इंस्ट्रक्शन भी दे के चाहिए सब तीन को चीज है पोतों बा तब हाउ बतुआ पैकेजिंग वाले करके दो तीन गो क्वालिटी के पोजू जो हमने के जो क्वालिटी के जो जुजू बा खिलौना बा ले करके तब जाएला जा MSD
2: और ये मान ला जा हाउ जो खिलौना हुआ बा जैसे भाई बुल्लन ओकर सेफ्टी ओकर इंस्ट्रक्शन ओकर लाज वो सब चाहेला मान ला हाउ ही नहीं बा हाउ जुजुआ हाउ जी फेल हो गल हमने के मंडी में नहीं जाए हाउ ये जी फेल हो गल तो हाउ ला सकब सा तब मंत्रालय के मंत्रालय दिस दे करी जो डिस्ट्रॉय हो जो शिपबाग करी
0: तो इतना साल से इतना अनुभव से इस कमवा होता तो कबो कोनो ऐसन अनहोनी होल
2: नहीं अभी ले नहीं होल अभी आगे वो नहीं हुई बस कि हमने हाई सा चेके करे के देखे के कंट्रोले करे के और ये जैसे बोला अनहोनी आगे
0: तो
2: भी नहीं हुई
1: कारण हमने के जब से भाई बोलते हैं वेरीफाई कर दिया जा जब ओकर हमने के वार्निंग वा नहीं बा ओकर सेव नहीं बा ओकर लाज नहीं बा हो जे बड़ी फेल हो
2: विदा कर दो
1: सर जो हमने के तब तेज विदा कर जा ओकर फिजिकल कैसे बा घाव लगी लेका के फ्लामा बेटी आग जर जाए नहीं तो मुंह में दाए जा लेका के कुछ पड़ जाए ला सौते के है सब तेज वाह कर जाए जहाँ तहाँ नहीं पासे होला
0: तो इतना खिलौना के बाद जैसे वायर अभी बोला केबल ये कैसे
2: MSB में एगो इलेक्ट्रिकल डिवीजन बा हौजा सब जितना इलेक्ट्रिकल केबल बा हौजा सैंपलिंग करे के हौजा टेस्टिंग करे के विदा कर दिला सा तो वो लोग अपन हिसाब से अपन टेक्नोलॉजी से जुन बा वो लोग टेस्टिंग करके हमने के कन्फर्मिटी रिपोर्ट वा दे दे दे

0: answer. Jay saya boleh lah sah. Jay meet the requirements of ISO till standard. हो जाला तो पास ही हो जाला तो वो लोग एगो कन्फर्मिटी रिपोर्ट भी दा कर लन जो पास ही होगल तो हमने हाउ कन्फर्मिटी वाला रिपोर्ट लिखे दुआनी की सहायता से हाउ कंटिन्यू हुआ रिलीज कर दे वापस
1: तो इतना आश्वासन तो हमने सकब जब बोले हमने के ग्राहक लोग के
0: सुरक्षित हवन सा
2: घर के कितना घरेलू सामान से लेकर के खिलौना से हमने के तबावेल हमने के जितना जब बोली सत्य ना मटेरियल जितना हमने के घर के बनावे के भी उमे लोहा उमे पाइप के जितना
0: प्लंबिंग इक्विपमेंट्स जैसे पटाखा हो बा हो सब आवेला
2: अब लाइटर भी बा लाइटर जिनसे भी कह जाए घरेलू लाइटर भी गैस बारे की और जो छोटा लाइटर पॉकेट लाइटर के भी सब परीक्षण करो जला पर टेस्ट कई लजा तब बिदा कई रह जा हमने की जहाँ तक बिल्डिंग मटेरियल भी हमने ने कह जा सीमा भी आने रह जाऊँ वहाँ पर टेस्टे
0: होला
2: हमने के आधार पर नहीं है लेकिन जो नया पोता थे जो बनावे ला जो नाव धन वो लोग फिर से टेस्टे जब मेरे को सर्टिफिकेट हो ही के चाहिए कौन चीज जा सकी ने ना तो अगर सर्टिफिकेट बा स्टैंडर्ड बा तब खेल दे के चाहिए
0: और अभी अभी के जमाना में घर बनेबा तो सीमा लोहा ऊ त मटेरियल जस्ट सब जस्टिया पोता मेन है मेन तो हवे खातिन हाउ घरवा के सुरक्षित सुरक्षा खातिन और हमने के ग्राहक लोग जो रही हो मैं हमने के भाई बहन जो रही हो घरवा में हाउ ओके एगो चाहेला एगो लासिरांस जैसे बोली ला सा हाउ घरवा सोलिड बा तो हवे खातिन हमने हाउ टेस्ट सैंपलिंग वा करी ला सा तब हाउ फेराई कुरान डिफिल कुरान जैसे इलेक्ट्रिकल बोली ला सा ओके सीमेंट जैसे भाई बोलन सब चाहेला जो गुड क्वालिटी तब हमने जाके हमने के ग्राहक लोग के राहत और सुरक्षा होला
1: और हमने के ई प्रोग्राम के जरिए यही बा हमने के जो लोग के चाहे जागरूकता बढ़ाई के कि निमन निमन चीज लेवे के और ध्यान से मतलब ध्यान से
0: जैसे पहला बोलनी जब खरीदारी करबा तब खाली दाम नहीं देखे सस्ता बा उबिया चाहे ना क्वालिटी वो देखे के हमार हिसाब से क्वालिटी देखिए और नहीं बोला था खाली क्वालिटी अपन पशुओं के हिसाब से जैसे एगो आवरेज करके देखिए तब जाके खरीदारी करिए ऐसे ही जैसे गोल मार कर देबा कुछ हो जा सस्ता किन देला हो जा देखबा क्वालिटी एक इस बार दो तीन दिन से अभी कल टूट गल बा तो हो खातिर हम बोलब क्वालिटी देखिए अपन पशुओं के हिसाब से देखिए तब खरीदारी करिए
1: कैसे एक जना के हम जानी रह जा के वो बोलक वो किन लेलक अपन चीज ढेर चीज किन लेलक जैसे को खास हूँ तब जो सस्ता मिलक किन कर रखल बा अब जब अब अभी से अभी करे जाता तब देखा कि मजा इस बा बेबित भाई में इस बा कुछ बस की सस्ता चीज किन के अब देखा था कि पूतों पर खराब हो गल बा तो कौन चीज सकबा बोले

0: आई हमेशा बोलिलन एगो विंडो शॉपिंग चाहेला करे के देखा आगे क्वालिटी देखिया जैसे और प्रोडक्ट सेफ्टी वो देखिया एगो एग्जाम्पल वो एगो खिलौना जाता हुआ किने एगो तीन साल के लड़का बा तुहर तीन साल के नीचे
1: हिसाब से
0: छः बरिस के जुजू एगो तीन बरिस के लड़का के दे देबा नहीं अच्छा बा। और जब कोनो चीज खरीदत हुआ असेंबली करे के बा ओकर हाउ एगो इंस्ट्रक्शन हो एगो मैनुअल जैसे बोली लासा
1: हाउ सब
0: एगो गाइडलाइन जैसे बोली लासा हाउ सब चाहेला देखे के बा कि नहीं बा। और हाउ कहे हर हम लॉफास डालत हैं जब एगो वाटर गैस वाटर हीटर खरीद बजा तो हाउ चाहेला देखे के कि हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर हुआ बा कि नहीं बा। और जैसे बोली ला हरदम द राइट टू चूज चुने के अधिकार बा तोहर जी हाँ इला में सैटिस्फैक्शन नहीं मिला था तो दूसर मगाजे में जाइए।
2: खाली सस्ता के चीज नहीं दिखे के चाहिए मुगुशिया इसे कहा बा सस्ता के चीज क्वालिटी के चीज नहीं निमन चीज सस्ता नहीं मिलेगा ओकर दाम पे ही करे के चाहिए जहाँ तहाँ समझौता नहीं करे के चाहिए जहाँ से तू खाए के चीज में सस्ता के किनब तो नहीं अच्छा बा क्वालिटी के चीज खाए के लासौते पहला देखे के चाहिए यानी कि कोई आर चीज खरीद बजाय तो असली और नकदी के पहचान के चाहिए जेन्युइन बा जो फेक प्रोडक्ट बा ढेर बा अभी इमिटेशन भी बा और इमिटेशन में ढेर क्वालिटी जेन्युइन जो बा बन सा इमिटेशन बा वो दूसर चीज़ के बा जैसे हायर क्वालिटी के बा एगो जेन्युइन में रहेला तो ओकर एगो कष्ट है पीछे समझे के चाहिए यानी कि खाए के चीज में समझौता नहीं। अब देखब जा सुपर मार्केट में जब जा सामने में जे चीज बा सस्ता डिस्काउंटेड प्राइस बा ओकर कारण बा काहे इतना सस्ता में बा ओकर सकेला 10 पे एस्पिरेशन भी
1: बा।
2: हां तो देख जब दस सेवी कर दियो अब जा तो सर बजा खरीदारी करी बेस्ट बिफोर प्रोडक्ट अब नहीं उतना समय में नहीं सकब जा सेवी करी तो उतना नहीं कीने के चाहिए सोचे के चाहिए अपन पैसा के
0: गैस पिए हो जाए।
2: हाँ ऐसा सोचे के चाहिए
1: सस्ता देखे लन जा तब जस्ती लेकर घरे आन के रखे लन जा तब बाद में चाहे फेंके
0: तभी भेज के एगो डिपेंस हो गल बिल आ गई ला तो हवे खातिर हम मांग करब सब जितना हमनी के ग्राहक लोग हवन जब खरीदारी करब सोच समझ के और अभी के जमाना में एआई हो गल बा सकब जा अपन अपन सब जितना इन्फॉर्मेशन खोजे के सकब जा खोज दे जितना अपन रिव्यू जैसे हरदम भाई बोले लन ऑनलाइन शॉपिंग करब तो रिव्यू खोज इन्फॉर्मेशन खोज कोनो फैसला लेवे के आगे तब जाके खरीदारी करिए। और जैसे भाई बोलन समझौता नहीं चाहेला करे के क्वालिटी में क्वालिटी जैसे भाई बोलन क्वालिटी के गो प्री है तो देखिए तुहर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बा रिस्क ले बा तो तुहर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुए में बा तो हवे खातिर हम मांग करब कुछ समझत नहीं हुआ हमनी लगे जैसे एनवीच सैंग बा हमनी के हॉटलाइन और 4650500 में सक बजा सुने करे कोनो सलाह
1: और व्हाट्सएप पे सकेला करे वो लोग। और जैसे अभी कुछ दिन पहले बोला एक सीट है जहाँ पर सब चीज लिखा जाना
0: जैसे दम वो हो जाता हुआ कोनो चीज के कोनो जैसे हमनी के जैसे भाई बोलन तीन प्रकार के दाल दाम जैसे MRP के और जैसे सब्सिडाइज दाम के खोज बजा जो ना सक बजा हो PFU वाके सीट में जाके
2: के व्हाट्सएप नंबर भी बा 5942888888 सक बजा व्हाट्सएप करे हमने के हॉटलाइन एन विद सैंक तो हमने के ईमेल भी बा consumerpayu@govmu.org हमने के मिनिस्टर कॉमर्स पे टापे कर बैठे इंटरनेट में सब मिल जाए इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे सक बजा शिकायत करे सक बजा हमने के सलाह मशवरा भी हमने कही जा सकब जागी दे करे कि कौन चीज करे कि
1: तो प्रिय श्रोताओं प्रिय दर्शकन ये प्रोग्राम अभी समाप्त होने को है और हम पूरी आशा के साथ ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम से काफ़ी लाभ आप लोगों ने उठाया होगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में बात किया हमें उम्मीद है कि इससे आप लोग ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स श्री सूरज लाल बिहारी जी और श्री विश्वास सिंह लालमन जी को हम तहे दिल धन्यवाद देते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दिया और साथ में कादेर दीपशिक और शीतल के उनके सहयोग के लिए इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में। एक अगले प्रोग्राम तक हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार और आदाब।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 4 वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच मेक्सिको सिटी के अज़्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा और मर्श समयानुसार रात 11:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने सहायता और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगले सप्ताह से प्रिंस विलियम्स और रिवियेरा के कई इलाकों में जल कटौती लागू की जाएगी। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे। मोवाक्वा जलाशय का जल स्तर घटकर 45% रह गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं, जबकि ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक बस्ती पर हुए सामूहिक गोलीकांड में 12 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस का मानना है कि घटना का संबंध अवैध खनन से जुड़े गिरोहों के बीच विवाद से हो सकता है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इन समाचारों को हम बेशक विस्तार देंगे 6 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: Continuous music. RM3.
3: Love is in the air. The magic of love is here. लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, प्यार करने वालों, आप सबों को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 4:02, ये है और एमप्री रेडियो मनोरंजन 94.6 98.2 MHz पर, और आप हमें देख रहे हैं और रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर भी। सो हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को और हमारे लिसनर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो दिल से मेरे दिल। जी हाँ, भी से शाम के 5 बजे तक चंद रोमांटिक तराने इस इवनिंग को और भी खूबसूरत और लाजवाब बनाने के लिए द बेस्ट सॉन्ग

The best romantic tracks are here to make you fall in love. Yes, we say rise in love, we would not say fall in love. क्योंकि प्यार जो होता है ना, एक बहुत ही मीठा एहसास होता है, दिल को झकझोर कर रख देता है. और ये प्यार एकदम मीठा होता है, कभी कभी खट्टा भी होता है, पर ये प्यार जो होता है लोगों को दीवाना बना देता है, लोगों की नींद चुरा लेता है. ये प्यार क्या है, आइए एक साथ सुनते हैं. दिल से दिल जब मिल जाते हैं तो हो जाता है प्यार. प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है. दिल दिया नहीं जाता, दिल खो जाता है.

और जब से हमें प्यार हुआ है ये वक्त कटता ही नहीं बस उसी का इंतजार रहता है कि कब वो हमारे सामने आए और हम उनका दीदार करें उनसे बातें करें हाय क्या बताए क्या हाल है हमारा उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये प्यार का रोग जो होता है ना बहुत ही मीठा होता है काश वो हमारे सामने आ जाए तो हम उनसे कह पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन आ जाओ कि हम दिल की बात तुमसे कह पाएं

तुम ही मेरे दिल हो, तुम ही धड़कन हो, तुम ही दिल हो, तुम ही धड़कन हो, तुम ही सब कुछ हो मेरा। जो तुम हो तो मैं हूँ, जो तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तेरे लिए मैं जी रहा हूँ, मेरे दिल का हर एक धड़कन तेरे नाम से है। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे बस तुम ही तुम नजर आती हो। मेरी जान हो तुम, मेरा जिगर हो तुम, मेरा वजूद हो तुम।

हाय कैसा ये प्यार है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, इजहार करना भी नहीं आता। हमें उनसे प्यार है पर डरता है ये दिल, कहीं अगर हम उनसे ये कह दे कि हमें उनसे प्यार है और वो कहीं हमसे रूठ न जाए। ये दिल भी कितना नादान है, ये दिल भी कितना पागल है, उससे प्यार कर बैठा जिसके पास इतना पैसा है, और मैं ठहरा गरीब, क्या वो इस गरीब के प्यार को अपनाएगी। इसी डर से मैं उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, सोचता हूँ कहीं इस गरीब का दिल टूट न जाए। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, ऐ खुदा हम क्या करें, करें तो क्या करें। हमें उनसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Continuous music. RM3.
2: Dil se mile dil.
3: दिल से दिल तब मिलते हैं जब दोनों तरफ प्यार बराबर होता है। वन साइडेड लव उतना अच्छा नहीं होता, एक तरफा प्यार अधूरा रह जाता है। पर अगर दोनों तरफ एक दूसरे से इंसान प्यार करे, लड़का लड़की को प्यार करे, लड़की लड़के को प्यार करे और दोनों तरफ प्यार बराबर हो, तो ये प्यार रंग लाता है और साजन सजनी के बिना अधूरा है, सजनी साजन के बिना अधूरी है। प्यार करने वालों की राहों में बहुत सारे कांटे आते रहते हैं, पर सच्चे प्यार करने वाली जो है हमेशा मिल ही जाते हैं।

दो ही मुलाकातों में बातों ही बातों में पता नहीं ये क्या हो गया कि अब हम उनके बिना एक पल भी जी नहीं पाते। कौन हो तुम जो दिल में समा गए हो, कौन हो तुम जो सांसों में बस गए हो, बताओ मुझे कौन हो तुम, क्यों चुप हो, क्यों कुछ कहती नहीं, क्या मुझसे शर्माती हो। अरे भाई हम तो तुम्हारे अपने हैं, फिर हमसे क्या शर्माना, हमसे क्या शर्माना, बता दो कौन हो तुम, कौन हो तुम।

हर प्रेम कहानी एक तरह नहीं होती अक्सर प्रेम कहानी में कहानी के अंत में प्रेमी और प्रेमिका मिल जाते हैं पर कभी-कभी किसी प्रेम कहानी में प्रेमी प्रेमिका हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं कभी-कभी जहर का घूंट पीना पड़ता है या तो लड़की किसी कारण लड़के से शादी नहीं कर पाती क्योंकि उस पर दबाव होता है या फिर लड़के वाले जो है लड़की को पसंद नहीं करते तो लड़का को त्याग करना पड़ता है हर बार क्यों प्यार करने वालों को बलिदान करना पड़ता है क्यों परिवार समाज आ जाता है प्रेमी प्रेमिका की राह में जब लड़का है राजी लड़की है राजी तो क्या करेगी काजी

और हम वही है वही है वही है जो आपके दिल में रहते हैं, जो आपकी सांसों में रहते हैं, जो आपकी धड़कनों में रहते हैं। जब आप हम याद करते हैं तो हम दौड़े चले आते हैं। हम वही है वही है वही है जब बस आपके दिल में रहते हैं।

चलिए तो हम कह देते हैं हम आपके दिल में रहते हैं और आप हमारे दिल में रहते हैं, क्या बात है। इसी गीत के साथ ही हम आपके दिल में रहते हैं टाइटल ट्रैक दिल से मेरे दिल प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। 5 बजे होगा अगला प्रोग्राम और हमारी आपकी मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग को सुबह के 6 से 9 बजे के बीच ऑन रेडियो मॉरिशस सुबह का नजराना प्रोग्राम में। शाम के 4 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो सो मच हमें रेडियो पर सुनने के लिए और टिकटॉक पेज पर हमें देखने के लिए। आशा करते हैं यू हैड ए वंडरफुल टाइम, हमारा समय तो बहुत अच्छा बीता आप लोगों के साथ। इट्स टाइम टू से गुड बाय और जय प्रताप सिंह से तालुक से सभी को प्यार भरा नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय, नमस्ते।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: प्रिय श्रोताओ, एक बार फिर जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर आपके लिए आई हैं डॉक्टर कीर्ति रामजतन और सुश्री सुरभि मोतिया, और हमें तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रीमान संजू टकुरी। श्रोताओ, प्रति सप्ताह आप लोगों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संस्कृत भाषा की एक पहलू को अत्यंत सरल रूप से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप शनेह शनेह इस भाषा को सीख सकें। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है अथवा आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे हम इस कार्यक्रम को बेहतर बना सकें, तो आप हमें अवश्य लिखिएगा और लिफाफे पर पता रूप में लिखिए, जानातु संस्कृतम, रेडियो प्रोग्राम, MBC मोका। आपका पत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देर न करते हुए आइए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना सुनिए।
2: सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने समय से संबंधित सवा का अभ्यास किया था, जिसको संस्कृत में सपाद कहते हैं। आज सार्ध अर्थात साढ़े का अभ्यास करेंगे, तो ध्यान से सुनिए और दोहराने का प्रयास कीजिए।
0: एकवादनम सार्ध एकवादनम, सार्ध एकवादनम डेढ़ बजे हाफ पास्ट वन, द्विवादनम सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम ढाई बजे हाफ पास्ट टू, त्रिवादनम सार्ध त्रिवादनम साढ़े तीन बजे, त्रिवादनम सार्ध त्रिवादनम सार्ध त्रिवादनम साढ़े तीन बजे, चतुर्वादनम सार्ध चतुर्वादनम सार्ध चतुर्वादनम साढ़े चार बजे। इसी प्रकार पंचवादनम सार्ध पंचवादनम, षड्वादनम सार्ध षड्वादनम, सप्तवादनम सार्ध सप्तवादनम, अष्टवादनम सार्ध अष्टवादनम, नववादनम सार्ध नववादनम, दशवादनम सार्ध दशवादनम, एकादशवादनम सार्ध एकादशवादनम, द्वादशवादनम सार्ध द्वादशवादनम।
1: आइए अब हम इनका प्रयोग वाक्यों में देखें। अहम् सार्ध एकवादने फलम् खादामि।
0: अहम् सार्ध एकवादने फलम् खादामि।
1: त्वम् सार्ध द्विवादने पाठम् पठसि।
0: त्वम् सार्ध द्विवादने पाठम् पठसि।
1: सः सार्ध त्रिवादने जलम पिबति।
0: सह सार्ध त्रिवादने जलम पिबति।
1: भवान सार्ध चतुर्वादने देवालयम गच्छति।
0: भवान सार्ध चतुर्वादने देवालयम गच्छति।
1: भवती सार्ध पंचवादने ईश्वरम नमति।
0: भवती सार्ध पंचवादने ईश्वरं नमति।
1: किं बालकः सार्ध षड्वादने दुग्धं पिबति।
0: किं बालकः सार्ध षड्वादने दुग्धं पिबति।
1: रामः सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति।
0: रामः सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति।
1: राधिका सार्ध अष्टवादने पत्रम लिखति।

0: राधिका सार्ध अष्टवादने पत्रं लिखति।
1: त्वं सार्ध नववादने किं खादसि?
0: त्वं सार्ध नववादने किं खादसि?
1: सः सार्ध दशवादने गृहम् आगच्छति।
0: सः सार्ध दशवादने गृहम् आगच्छति।
1: अहं सार्ध एकादशवादने संस्कृतपुस्तकं पठामि।
0: अहं सार्ध एकादशवादने संस्कृतपुस्तकं पठामि।
1: सा सार्ध द्वादशवादने न धावति।
0: सा सार्ध द्वादशवादने न धावति। न का अर्थ है नहीं।
1: श्रोताओ, पिछले एपिसोड्स में हमने भविष्यत काल में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं के एक वचन का रूप देखा, साथ ही उनका प्रयोग वाक्यों के माध्यम से भी सीखा। आज हम भविष्यत काल में क्रियाओं के एक वचन रूप के साथ साथ बहुवचन रूप को भी देखेंगे। आप ध्यान से हमें सुनिए और दोहराइए। सह गमिष्यति, ते गमिष्यन्ति।
0: सह गमिष्यति, ते गमिष्यन्ति। वह जाएगा, वे सब जाएंगे।
1: सा गमिष्यति, ताह गमिष्यन्ति।
0: सा गमिष्यति, ताह गमिष्यन्ति। वह जाएगी, वे सब जाएंगी।
1: त्वं गमिष्यसि, यूयं गमिष्यथ।
0: त्वं गमिष्यसि, यूयं गमिष्यथ। तुम जाओगे, तुम सब जाओगे।
1: अहम् गमिष्यामि, वयम् गमिष्यामः।
0: अहम् गमिष्यामि, वयम् गमिष्यामः। मैं जाऊंगा अथवा जाऊंगी। हम सब जाएंगे अथवा जाएंगी।
1: सह आगमिष्यति, ते आगमिष्यन्ति।
0: सह आगमिष्यति, ते आगमिष्यन्ति। वह आएगा, वे सब आएंगे।
1: सा आगमिष्यति, ताह आगमिष्यन्ति।
0: सा आगमिष्यति, ताह आगमिष्यन्ति। वह आएगी, वे सब आएंगी।
1: त्वं आगमिष्यसि, यूयं आगमिष्यथ।
0: त्वं आगमिष्यसि, यूयं आगमिष्यथ। तुम आओगे, तुम सब आओगे।
1: अहम् आगमिष्यामि, वयम् आगमिष्यामः।
0: अहम् आगमिष्यामि, वयम् आगमिष्यामः। मैं आऊंगा अथवा आऊंगी। हम सब आएंगे अथवा आएंगी।
1: सह पठिष्यति, ते पठिष्यन्ति।
0: सह पठिष्यति, ते पठिष्यन्ति। वह पढ़ेगा, वे सब पढ़ेंगे।
1: सा पठिष्यति, ताह पठिष्यन्ति।
0: सा पठिष्यति, ताह पठिष्यन्ति। वह पढ़ेगी, वे सब पढ़ेंगी।
1: त्वं पठिष्यसि, यूयं पठिष्यथ।
0: त्वं पठिष्यसि, यूयं पठिष्यथ। तुम पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे।
1: अहम् पठिष्यामि, वयम् पठ

0: हम सब दौड़ेंगे अथवा दौड़ेंगी।
1: सः हसिष्यति, ते हसिष्यन्ति।
0: सः हसिष्यति, ते हसिष्यन्ति। वह हसेगा, वे सब हसेंगे।
1: सा हसिष्यति, ताः हसिष्यन्ति।
0: सा हसिष्यति, ताः हसिष्यन्ति। वह हसेगी, वे सब हसेंगी।
1: त्वं हसिष्यसि, यूयं हसिष्यथ।
0: त्वं हसिष्यसि, यूयं हसिष्यथ। तुम हसोगे, तुम सब हसोगे।
1: अहम हसिष्यामि, वयम हसिष्यामः।
0: अहम हसिष्यामि, वयम हसिष्यामः। मैं हसूंगा अथवा हसूंगी। हम सब हसेंगे अथवा हसेंगी।
1: सः वदिष्यति, ते वदिष्यन्ति।
0: सः वदिष्यति, ते वदिष्यन्ति। वह कहेगा, वे सब कहेंगे।
1: सा वदिष्यति, ताः वदिष्यन्ति।
0: सा वदिष्यति, ताः वदिष्यन्ति। वह कहेगी, वे सब कहेंगी।
1: त्वं वदिष्यसि, यूयं वदिष्यथ।
0: त्वं वदिष्यसि, यूयं वदिष्यथ। तुम कहोगे, तुम सब कहोगे।
1: अहम वदिष्यामि, वयम वदिष्यामः।
0: अहम वदिष्यामि, वयम वदिष्यामः। मैं कहूंगा अथवा कहूंगी। हम सब कहेंगे अथवा कहेंगी।
1: सः मेलिष्यति, ते मेलिष्यन्ति।
0: सः मेलिष्यति, ते मेलिष्यन्ति। वह मिलेगा, वे सब मिलेंगे।
1: सा मेलिष्यति, ताः मेलिष्यन्ति।
0: सा मेलिष्यति, ताः मेलिष्यन्ति। वह मिलेगी, वे सब मिलेंगी।
1: त्वं मेलिष्यसि, यूयं मेलिष्यथ।
0: त्वं मेलिष्यसि, यूयं मेलिष्यथ। तुम मिलोगे, तुम सब मिलोगे।
1: अहम मेलिष्यामि, वयम मेलिष्यामः।
0: अहम मेलिष्यामि, वयम मेलिष्यामः। मैं मिलूंगा अथवा मिलूंगी। हम सब मिलेंगे अथवा मिलेंगी।

श्रोताओं, आइए अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के सातवें श्लोक का पाठ करें। आप हमें ध्यान पूर्वक सुनिए और फिर दोहराइए।

0: मीते।
1: अब प्रथम पंक्ति को सुनिए और दोहराइए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम।
0: अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम।
1: द्वितीय पंक्ति। नायका मम सैन्यस्य सैज्यार्थं तान्।

0: ते। इस बार पूरे श्लोक का पाठ करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य सैज्यार्थं तान् ब्रवीमि ते।
1: अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैज्यार्थं तान् ब्रवीमि ते।
0: इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आइए प्रार्थना कर लें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इस समय शाम के 5:27 हुए हैं।
4: राम रसधारा, रसधारा
3: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। रामरस धारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में 4 बहनें उपस्थित हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। माला जी जय सियाराम।
5: जय सियाराम भाई जी।
3: शिवानी जी जय सियाराम।
6: जय सियाराम गुरु जी।
3: सीता जी जय सियाराम। अंजू जी जय सियाराम। आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की स्तुति, श्री हनुमान जी की स्तुति और सुमिरनी के साथ। जय सियाराम।
7: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: जय सियाराम। श्रोताओं, संपूर्ण रामचरितमानस की इस भावपूर्ण यात्रा में आज हम माता पार्वती जी के जन्म का प्रसंग जारी रखेंगे। वो प्रसंग जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था और जो आगामी गुरुवार तक जारी रखेंगे। आगामी गुरुवार 18 जून को जिस दिन पार्वती जयंती मनाई जाएगी। पर्वतराज हिमावन के राज्य में माँ पार्वती का जन्म होता है। पार्वती माँ अपने पूर्व जीवन में, अपने पूर्व जन्म में माँ सती थी और इस जन्म में वही माता सती पार्वती का रूप धारण करती हैं, जो प्रकृति का प्रतीक है। पार्वती माँ जो अन्न देवी स्वरूपिणी है, संपूर्ण जीव जंतुओं को धारण करने वाली धैर्यवती भूमि देवी हैं। उसी माँ पार्वती के जन्म से लेकर उनका विवाह शिव शंकर भोलेनाथ जी के साथ

0: इस यात्रा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सौम्य रूप से रामचरितमानस के बालकांड के पहले भाग में वर्णित किया है। आज भी हम संपूर्ण रामचरितमानस के इस प्रसंग का रसपान करेंगे, तो चलें परायण शुरू करते हैं दोहे नंबर 67 से स्टूडियो में उपस्थित बहनों के साथ। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: हिमावन ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, अर्थात आप भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपकी सर्वज्ञ पहुंच है, अर्थात क्षण भर में किसी भी समय कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। सो नारद मुनि पार्वती माँ के भविष्य के बारे में क्या बताते हैं और आगे जाकर ये हम सब सुनते हैं पहले चौपाई में। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा।
2: हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस सिर्फ राम जी की गाथा नहीं है, अपितु ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शैव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय और सभी सनातन धर्म के संप्रदाय का समागम है। और इस प्रसंग में ऋषि यज्ञवाल्क्य भरद्वाज मुनि जी को शिव जी और माता पार्वती के मिलने की कथा सुनाते हैं। कह मुनि बिहसी गोर मिदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी उसके नाम है। जय भवानी, जय गौरी मैया। सुनते हैं दूसरी चौपाई।
0: जय सियाराम।

0: संतत पियही प्यारी सदा अचल एही कर अभी अही वाता एही ते जसु पाई है पितु माता। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, यह अपने पिता को सदा प्यारी होगी, यह अपनी अपने पति को भी सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे उसके माता पिता यश पाएंगे। हर माता पिता का यही स्वप्न होता है कि उनकी सुपुत्री का विवाह उत्तम कुल में हो, जहां उन्हें हमेशा पति का प्यार प्राप्त हो और साथ ही साथ वे अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। और कुछ ऐसी मधुर वाणी में नारद जी ने हिमावन और मैनावती को सुनाया। अगली चौपाई जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: Tracy Item.
1: होई पूज्य सकल जग माही एही सेवत कछु दुर्लभ नाही एही कर नाम सुमेरी संसारा त्रय चरही पतिव्रत असिधारा यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे देवी और सज्जनों हम सब जानते हैं कि सीता स्वयंवर से पहले सीता जी गौरी मां की पूजन के लिए पुष्प वाटिका जाती हैं और वहां पर पहली बार के लिए उन्हें राम जी की झलक प्राप्त होती है मॉरिशस में भी गौरी पूजन का महत्व हमारे रीति रिवाजों में है विवाह संस्कार से पूर्व और विवाह संस्कार के बाद भी घर की माताएं गांव की काली माएं जाकर मन्नतें मांगती हैं जिससे कि सब कुछ ठीक से गुजरे चौपाय नंबर 4
0: जय सियाराम

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी सुनहु जो अब अवगुन दुहिचारी अगुन अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना अर्थात नारद जी पर्वतराज हिमावन से कहते हैं हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो उनका उनके होने वाले पति कैसे होने वाले हैं कैसा होगा शिव जी के बारे में लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुणहीन अर्थात सतो रजो और तमोगुण से परे उसके उससे परे मानहीन अर्थात जो मान सम्मान अपमान से ऊपर हैं माता पिता विहीन जिसकी कोई मान है जिसका कोई पिता नहीं उदासीन संशयहीन हर प्रकार की संशय से मुक्त ऐसे उनके वर होने वाले हैं

0: pensiero.
1: रसधारा
2: योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कहां मिलही परी हस्त असी रेख योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति उसको मिलेगा इसके हाथ में ऐसी ही रेखा परी है आगे क्या होगा अगले प्रसंग में क्या होगा हम सुनेंगे किस तरह से माता मैनावती उनकी सहेलियां और राज्य में जितने भी लोग हैं किस प्रकार से नारद मुनि के वचनों को स्वीकार करते हैं लेते हैं अगली चौपाई जय सियाराम
0: जय सियाराम

0: रसधारा
1: सुनी मुनि गिरा सत्य जहां जानी दुख दंपति ही उमा हर्षानी नारद हूं यह भेद न जाना दशा एक समुझ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमावन और मैनावती को दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। जय सियाराम दूसरी चौपाई।
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा रसधारा
2: सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमावन और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। जय सियाराम
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा
2: उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु विमल कठिन मन भासन देहु जानी कुअवसरु प्रीति दुराई सखी उच्छंग बैठी पुनि जाई। अर्थात देव ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती माता के हृदय में शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन होगा। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: झूठी न हो ई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी, उर धरी धीर करहीं गिरी, राऊ कहू नात का करहूं उपाऊं। अर्थात देवऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ये विचार कर हिमामन मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सुनते हैं दोहा। जय सियाराम,
0: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: राम रसधारा रसधारा
2: कहा मुनि सहिमा वत सुनु जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनिवर ने कहा हे हिमावन। नारद मुनि जी ने कहा हे

ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। अब आगे क्या होता है, पार्वती माँ किस तरह से शिव जी को पाने के लिए प्रयास करती हैं, ये हम जानेंगे अगले गुरुवार के राम रस धारा प्रोग्राम में। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। शांति पाठ स्टूडियो में उपस्थित बहनों के संग आशा करते हैं कि जितने भी लोगों ने इस प्रसंग को हमारे साथ सुना रेडियो के जरिए, रेडियो मनोरंजन के जरिए, आपको ये प्रसंग बहुत ही भाया, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अगले गुरुवार को फिर से हमारे साथ जुड़ें। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चार वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा और मर्श समय अनुसार रात्रि 11 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने सहायता और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगले सप्ताह से प्रिन विलियम्स और ब्लैक रिवर के कई इलाकों में जल कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे। मौवाक्वा जलाशय का जल स्तर घटकर 45% रह गया है। बावन मोशन श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए भारत के लिए रवाना हुए। मोशन सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन तथा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु उत्तराखंड के चार पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। चार वर्षों के इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच आज फिर से शुरू। यूएस, कनाडा, मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला आज रात मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये ऐतिहासिक मुकाबला मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित स्टेडियम में लगेगा, जहां मर्श समयानुसार रात्रि 11 बजे किक ऑफ होगा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बात यह है कि ये मुकाबला एमबीसी 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले खेल विभाग यानी स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक विशेष कार्यक्रम राति के 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। करुणा लालू।
4: फीफा वर्ल्ड कप के सह मेजबान मेक्सिको का सामना आज रात 11 बजे दक्षिण अफ्रीका से होगा, जो 2010 यानी 16 साल बाद पहली बार विश्व कप में वापसी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2010 विश्व कप के उद्घाटन मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ग्रुप ए में शामिल और दर्शकों के जबरदस्त समर्थन से उत्साहित विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद मेक्सिको इस बार शानदार प्रदर्शन करने और 2022 विश्व कप की पहली ही दौर में हुई ऐतिहासिक निराशाजनक विदाई को पीछे छोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगा। मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया जो तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1970 और 1986 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी उसने की थी। वहीं बाफाना बाफाना यानी दक्षिण अफ्रीका अपनी चौथी विश्व कप प्रतियोगिता खेल रहा है और 2010 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। नाइजीरिया को पीछे छोड़ते हुए 30 में से 18 अंक हासिल कर उसने अपनी जगह पक्की की है। 48 टीमों वाले इस फीफा वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला आज रात 11 बजे एमबीसी 11 पर प्रसारित होगा। साथ ही उद्घाटन समारोह लाइव दिखाया जाएगा। मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक अस्टेका स्टेडियम में आयोजित यह समारोह मौसम समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण भी एमबीसी 11 पर होगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में मैक्सिकन संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें जे बाल्विन और टाइला जैसे अंतर्राष्ट्रीय सितारे

0: पर उतरेंगे। तो आइए फुटबॉल का जश्न शुरू करें, फीफा वर्ल्ड कप का आनंद उठाएं।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों को एमबीसी प्ले पर देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सदस्यता ले रहे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए एमबीसी ने अपनी सहायता सेवाओं को और मजबूत किया है। टेलीफोन असिस्टेंस, जनसंपर्क सेवाओं और तकनीकी सहायता के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फुटबॉल प्रेमी वर्ल्ड कप के रोमांच का पूरा आनंद बिना किसी रुकावट के उठा सके।
0: एप्लीकेशन डाउनलोड करना, अकाउंट बनाना, भुगतान करना या भूला हुआ पासवर्ड फिर से प्राप्त करना, पिछले कुछ दिनों से एमबीसी प्ले एप्लीकेशन को लेकर अनुरोधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका जवाब देने के लिए एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कई लोग सोच रहे हैं कि 300 रुपए मात्र एक मैच के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड कप यानी एमबीसी प्ले पर 104 मैच के लिए है। हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि क्या करना है। कुछ लोग फोन करके जानकारी मांग रहे हैं और कई लोग एमबीसी भी आ रहे हैं।
2: J'ai entendu les publicités à la radio.
0: रेडियो पर मैंने इसके बारे में सुना, मैं संतुष्ट हूँ, उन्होंने मेरी मदद की और इस एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल किया।
2: Avec la télé ou avec le téléphone portable, je suis très satisfait, l'accueil a été chaleureux et on m'a aidé aussi pour mettre l'application sur mon téléphone.
3: Je trouve cela très intéressant donc.
0: मैं ज्यादा जानकारी हासिल करने आया हूँ, हर चार साल में वर्ल्ड कप आता है, इतना करना तो बनता है। इस बीच तकनीकी टीमें प्लेटफॉर्म के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रही हैं ताकि प्रतियोगिता की शुरुआत के साथ अपेक्षित उपयोगकर्ताओं की भारी भीड़ को संभाला जा सके। टेक्नीशियन यह भी याद दिलाते हैं कि जिन लोगों के पास एंड्रॉइड टेलीविजन नहीं है, वे एक एंड्रॉइड बॉक्स की मदद से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने टीवी पर मैच देख पाएंगे।
4: L'application MBC Play nous en lie en deux versions. Nous en avons une version pour mobile et une version pour télévision.
0: MBC Play दो वर्शंस में उपलब्ध है, मोबाइल और टीवी, मात्र एंड्रॉइड टीवी के लिए। फोन को भी टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं।
4: Et pour connecter notre téléphone avec télévision, pour nous sign in, pour nous faire la connexion, pour être capable de regarder la télévision.
0: इस मजबूत सहायता व्यवस्था के साथ एमबीसी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एमबीसी प्ले प्लेटफॉर्म पर एक सरल, सुलभ और सहज अनुभव प्रदान करना है।
1: फीफा वर्ल्ड कप पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन मैदान पर होने वाले मुकाबलों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में इसके आर्थिक प्रभावों पर भी करीब से नजर रखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रतियोगिता से पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग, रेस्टोरेंट और परिवहन सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। करोड़ों दर्शकों और लाखों पर्यटकों के आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में नई गतिविधियां पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। और फुटबॉल के सबसे बड़े महोत्सव फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका और मॉरिशस में भी इसका उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। घरों, कार्यस्थलों और खेल प्रेमियों के बीच पसंदीदा टीमों और संभावित विजेताओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी, किस खिलाड़ी से हैं सबसे ज़्यादा उम्मीदें और इस वर्ल्ड कप को लेकर मॉरिशन कितने उत्साहित हैं, जानते हैं मॉरिशनों से और सुनते हैं उनकी राय।
5: फीफा विश्व कप आखिरकार शुरू हो रहा है और मॉरिशस के फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। उत्तरी अमेरिका में आयोजित ये 2026 विश्व कप प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह पैदा कर रहा है।
6: Ouais, mon cas c'est une pause, mon bois un peu d'été, c'est pas qu'il me vient virer, on voit là.
7: Même si mon cas, moi aussi, bien que bleu là, bloqué. Ah, moi aussi, je vais en commenter, puis passer le bon téléphone.
8: Vous êtes côté Namanzo, nous pouvons dire que les garçons, nous êtes côté Namanzo, c'est moi côté Namanzo, plus beaucoup, le football intéressant là, que nous vous en suivre.
5: Sham qui est surouati à dire, Sham Wali Mukablon, pour déclencher un picture clip, à San Hogan.

0: prêter. Parce qu'il y a 11 ans, il ne soit pas trop tard, ça.
1: Mon Richard, pour penser qu'on 11 ans, il possible sur le football, que ce sera commencement, ce sera finition, final.
2: Lekin, आधी रात सुबह 2 बजे 4 बजे या 6 बजे होने वाले मैचों के लिए खास इंतजाम करना होगा.
3: Tous les jours, on lève 5 heures, mais normalement 5 heures aussi. Mais nous caguetés, man 5 heures là, 5 heures du matin.
4: Mais là, moi, bien sélectif. Moi, bien que t'aimes quoi, qui man match qui dans la porte. Par exemple, man match commence 4 heures du matin, un peu difficile. À moi qui moi l'équipe, je salaire là, peut-être moi va guetter.
5: Bon, sont contents de nous guetter, nous faire un petit gâteau, un petit dîner, nous guetter le football.
6: Nous vous avons très bien, à moi. Il y a là quoi, on arrive bien, nous guetter le football là.
2: इन चुनौतियों के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी टीमों को लेकर चर्चाएं और बहसें पहले ही शुरू हो चुकी हैं.
7: गए पियाजी ला फ्रांस
8: अर्जेंटीना मेम अर्जेंटीना
9: मैं बू फैन बू फास्ट से सा सा कप डू मोंड
10: मां मैं सपोर्ट पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो
11: Je supporte la France.
12: Moi, je supporte le Brésil.
13: Portugal, à cause de mon garçon, je suis fan de Cristiano Ronaldo.
2: Mexico et Dakshin Africa ke beech, shuruaati muqable se kuch hi ghante pehle, Mauritius ke football prashansak apne TV aur smartphone screen ke samne romanch ka anubhav karne ke liye तैयार हैं. ऐसा जुनून जो न सीमाएं जानता है न ही समय की पाबंदी. अगले 6 सप्ताह तक फुटबॉल ही चर्चा का केंद्र में रहेगा और हर प्रशंसक को उम्मीद होगी कि उसकी पसंदीदा टीम 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में विश्व कप ट्रॉफी उठाए.
14: अगले सप्ताह से प्रिंस विलियम्स और रिवियेरा के कई इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को रोजाना जल कटौती का सामना करना पड़ेगा. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के अनुसार लगभग 150,000 घर प्रभावित होंगे, जहां प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी. ये फैसला मोवाक्वा जलाशय में उपलब्ध जल भंडार को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है, जो इन क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराता है. वर्तमान में इस जलाशय का जल स्तर केवल 45% हैं, जबकि आने वाले महीनों में पर्याप्त वर्षा की संभावना भी कम बताई जा रही है. आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना की विशेष यात्रा पर 52 मर्शन श्रद्धालु हिमालय की ओर रवाना हुए. वे भारत में आयोजित होने वाली पवित्र चार धाम यात्रा में भाग लेंगे, जिसे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है. ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है. मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के दर्शन करेंगे.
15: बुधवार 10 जून की शाम सचिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोग अपनी भावनाएं समेटे नजर आए. 52 मॉरिशन हिमालय में 4 धाम की यात्रा के लिए देश से रवाना होने वाले थे.
16: बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग भारत जा रहे हैं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए, और ये सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के आयोजन है, और इसमें हम 50 लोग जा रहे हैं, और ये महादेव जी की कृपा है, केदारनाथ भगवान के आशीर्वाद और बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से. और ये यात्रा हम जब करेंगे तो एक हमारे देश के लिए, हमारे जाति के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि महादेव जो हैं पूरे विश्व के हमारे रक्षक हैं, और उनकी सेवा पूजा करने से सबका कल्याण होगा. ये हम यही भगवान शिव जी से प्रार्थना करने जा रहे हैं.
17: हम पहली बार यात्रा करने जा रहे हैं. हम बहुत खुश हैं, हमको ऐसा अवसर मिला मॉरिशस सनातन धर्म के द्वारा, उसे मेम्बर और उसे द्वारा हमको ऐसा अवसर मिला. हम उनको धन्यवाद करते हैं.
18: पुमा फ्रांचमेंट सेट एन ग्रैंड अफेयर कम एंड टन केदारनाथ मैं एक्स्ट्रा कंटेंट
19: ये एन ग्रैंड फियर थी पुमा कि मो पिक अप फे ऐसा यात्रा ला द एन जन लाइज कम सा.
15: ये मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड तथा प्रधानमंत्री दफ्तर की मिलीजुली पहल हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए प्राथमिकता भी दी गई ताकि यात्रियों को आसानी हो.
3: Tout Mauricien qui allent en pèlerinage demande

0: सभी मॉरिशनों को हम सुविधाएं देते हैं ताकि सब सही से चले। मौसम के कारण चार धाम की यात्रा साल में मात्र 6 महीने तक ही संपन्न की जा सकती है। हर साल मॉरिशनों की 4 टोलियां वहां जाती हैं। जीवन में एक बार तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए, हम यही संदेश दे रहे हैं। अगली चार धाम यात्रा सितंबर अक्टूबर महीने के लिए निर्धारित है।
1: किसी शहरी इलाके में तेजी से कार्रवाई करना, खतरे को काबू में करना, घायलों को बचाना और पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना, ऐसी ही कई परिस्थितियों के अभ्यास आज वक्वा स्थित पोटली बैंड हेडक्वार्टर्स में किया गया। यह अभ्यास कार्रवाई मॉरिशस की विभिन्न विशेष पुलिस इकाइयों, फ्रांसीसी अन्य सैनिकों जो प्रशिक्षकों के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रही थी। इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई, तालमेल और त्वरित कार्रवाई क्षमता को और मजबूत बनाना है। लिस्टेड कंपनीज माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स एसोसिएशन और एमोरशस रिटायरीज सेल ने मांग की है कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एमोरशस के शेयरों की अनिवार्य खरीद और 2021 से 2022 के बीच पेंशन फंड को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में स्थानांतरित किए जाने के मामलों की स्वतंत्र और विस्तृत जांच करे। ये मांग आज पोर्टली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान की गई। देश के उत्तरी क्षेत्र में मवेशियों के प्रजनन में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हो रही है, जिसका असर दूध उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। खियोले के कुछ पशुपालकों का कहना है कि पशुओं के प्रजनन से जुड़े सरकारी कार्यक्रम में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं कृषि उद्योग मंत्रालय ने भी माना है कि इस सेक्टर में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। और अब बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने हुर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक बस्ती पर हुए सामूहिक गोलीकांड में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हैं। पुलिस के अनुसार 10 से अधिक हथियारबंद हमलावर इलाके में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद फरार हो गए। हमले के कारणों की जांच जारी है। हालांकि पुलिस को संदेह है कि इसका संबंध अवैध खनन से जुड़े गिरोहों के बीच विवाद से हो सकता है।
0: दक्षिण अफ्रीका एक और घातक गोलीबारी के बाद सदमे में है, जो जोहान्सबर्ग में हुई। कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हो गए जब हथियारबंद लोगों के एक समूह ने क्लीवलैंड इलाके में गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार हमलावर ने अचानक एक ऐसे घर में घुसकर गोलियां चलाई जो अनौपचारिक आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हमले की सही परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं और अभी तक किसी भी मकसद की पुष्टि भी नहीं की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है। जांचकर्ता कई पहलुओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें आपराधिक गतिविधियां और गिरोहों के बीच विवाद शामिल हैं। इस हमले ने दक्षिण अफ्रीका में हथियारबंद हिंसा पर बहस को फिर से तेज कर दिया है, जो दुनिया के सबसे अधिक अपराध दर वाले देशों में से एक है। अधिकारियों ने दावा किया है कि वे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
1: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करविंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी और तेज हवाओं का असर जारी रहेगा। आज रात को देश के पूर्व सेंट्रल प्लाटो पर भी रह रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर के मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बरसात हो सकती है और मौसम कुछ खराब ही रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहर निकलने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 और अधिकतम तापमान रहेगा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्यास्त 5:37 पर हो गया है, सूर्योदय कल सवेरे होगा 6:41 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। जुखे रोड नोत्रदाम में 77 साल के 77 years old के जगदीप देवीदीन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें परमानंद के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल सुबह के 10 बजे उनकी पत्नी भानुमती देवीदीन के मकान नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। ट्रियोले में 65 साल की 65 years old की जयंती गोप घनश्याम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम रचिया, लोग उन्हें साकुन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। साई बाबा रोड बिले रिवे सेश में 60 साल की 60 years old के श्री देवदत्त राम खलावन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बॉय शोफेयर टैक्सी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान बिलेर व्यासश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। रॉयल रोड प्लेंडी रोश में 90 years old के श्री जयनारायण रामजतन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जय के नाम से जानते थे। आपको बता दें कि उनके अर्थी आज दिन के दौरान 2:30 बजे उठाई गई। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to a Radio Masti.

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अपने घर मिला लीजिए. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. इस वक्त शाम के ठीक का 6:33 हो गई हैं.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सब ठीक है ना? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन हैं। आज हमारी जो नई सोच है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब इसके बारे में हम सोचते हैं तो एक ऐसे फेज में पहुंच जाते हैं जो शायद हम लोगों को एक डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप कभी गिरे हैं? मीन्स बड़े होने के बाद एकदम से धराम गिर गए हैं, कभी हुआ है ना? खासकर बाजार में या फिर एयरपोर्ट में या फिर किसी भीड़ में चलते समय आप गिर गए होंगे। लेकिन उस टाइम जब आप गिरे, कैसा महसूस हुआ? आमतौर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब गिरने के बाद इधर उधर देखते हैं कि कोई उनको देखा, मुझे देखा या नहीं, मैं गिर गया यार। तब उसके बाद, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही आप उठने की कोशिश करते हैं, संभल करके उठने की कोशिश करते हैं। पता है, गिरना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसी थी जहां पर आप गिर गए हैं। और गिरने के बाद शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर में पाए जाने वाली जो शर्मिंदगी है उसको हटाना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी ऐसी ही है, अगर आप गिर गए हैं तो इट्स ओके, फाइन, गलती हुई है, इट्स ओके। इधर उधर क्या कह रही हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप वहां से उठ करके, संभल करके, फिर से उठ करके आगे चलने की कोशिश करते, दैट मैटर्स। जी हाँ दोस्तों, और जब आप उस शर्मिंदगी को निकाल देंगे ना, तब आप दूसरों को शर्मिंदा नहीं करेंगे अगर वो गिर गया हो, बल्कि आप उनके जो कॉरेज हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके हौसले को अफजाई करने के लिए अच्छी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे, अच्छा तुम्हारे साथ ये हो गया है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरी बात है। ये कहने के बजाय जो हो गया सो हो गया यार, अब आप फ्यूचर के बारे में फोकस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सामने वाले के प्रेजेंस को इस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे तो व्हाई नॉट, आप भी शुरुआत कर सकते हैं अपने प्रेजेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों के प्रेजेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम भी यहां पर पहुंच गए हैं। चलिए, आप अपनी जिंदगी में एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर, खासकर जिंदगी के नए चैप्टर लिखने की कोशिश कीजिए, वो भी जुनून के साथ। और अभी आपके साथ होंगे यहां पर रेडियो मनोरंजन की लहरों पर।

और ये गाना उन सभी मम्मीज के लिए, सभी माताओं के लिए जिस वक्त किचन में अपने लल्ला या फिर अपनी लाली के लिए कुछ ना कुछ तो बना रही है, बहुत ही प्यार के साथ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। बैकग्राउंड म्यूजिक में हमारी आवाज और आपके जो गाने हैं वो यहाँ पर चल रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप रेडियो मनोरंजन की लहरों पर सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम

जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता है। पते की बात यह है कि मुझे खुद नहीं पता है कि आप इस वक्त क्या खा रहे हैं या फिर क्या बना रही हैं, लेकिन जो कुछ आप बना रहे हैं वो पूरी शिद्दत के साथ बना रहे हैं। इसके लिए हम आपसे बेमतहाशा मोहब्बत करते हैं जी। आपकी भी पारी आएगी। You're listening to Abhi for your radio मनोरंजन। Yes, नई सोच कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, अगर मेहनत करेंगे तो वक्त लगेगा। इट्स ओके, अगर आज नहीं हुआ, अगर इस साल नहीं हुआ, अगर

इस महीने नहीं हुआ, इट्स ओके। पता है स्वादिष्ट भोजन धीमी आंच में ही बनते हैं ना, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपकी भी बारी आएगी।

पता है जब मुश्किल हालात में अगर आपके लबों पर एक मुस्कान हो तब पता चलेगा जनाब आप में ताकत है कि डिफिकल्ट मोमेंट में भी आप मुस्कुरा रही है, तो आप भी मुस्कुराइए ना।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

वेलकम बैक फॉर यू दिलों की आवाज कार्यक्रम अभी के साथ। नमस्कार आदाब, आप सभी का हम दिल से वेलकम करते हैं। इस वक्त रात के 7:07 हो गए हैं और ऐसे टाइम पर 402-80-70 पर 402-80-70 पर फोन करने का आइडिया एकदम मस्त रहेगा। जी दोस्तों, थर्सडे की रात है और कैसे मैं कह सकता हूँ कि हम ऐसी रात को भूल सकते हैं, कभी नहीं, बल्कि उसको यादगार बनाने का सॉलिड आइडिया मेरे पास है। अगर आप फोन नहीं कर पा रहे तो व्हाई डोंट यू सेंड मी ए मैसेज। अच्छा, मेरा मिरेकल नंबर ये है 5250-6200। आप मैसेजेस भेजिए, एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से निकल करके अब घर की ओर जा रही हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, बॉस से पंगा हो गया, मूड भी काफी ऑफ हो गया। यार यही जिंदगानी है, लेकिन आप लोगों के मूड को टकाटक बनाने के लिए हम भी यहां पर पहुंच गए हैं। और ऐसे टाइम पर अगर बहुत सारे जो मम्मीज हैं, चाची हैं, नानी हैं, भौजी हैं, काकीज हैं, वे लोग इस वक्त किचन में काफी बिजी हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा सा थुमका लगा दिए, बर्तन मांज रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छी तरह से लगड़ लो। ऐसे ही ऐवे ही ये जो रात की बात जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। राइट नाउ वी शॉल ब्रिंग यू डाउन टू द मेमोरी लेन ऑफ द गोल्डन ईरा 90s। ये गाने सुनने के बाद आप कहेंगे हाय हाय हाय हाय। रिमेंबर बॉम्बे वाइकिंग।

जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के हम कदम बनने के लिए हम यहाँ पर एकदम तैयार है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आप लोगों के फोन का इंतजार हम कर रहे हैं ऑन 402-80-70 पर 402-8-07-0 पर आप हमें फोन कीजिए। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको यहाँ पर चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं देयरफॉर इट्स ओके, मेरे ऑप्शन दो, इसका मतलब ये है 5250-6200 पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। अगर आप नाइट शिफ्ट पे काम कर रही हैं तो लुक्का छुपे के साथ आप चोरी चोरी चुपके चुपके मैसेज भेज दीजिए, हमको पता चल जाएगा। अभी के लिए चलिए थोड़ी सी गुनगुनाते हैं ना। याद आया ना, अभी के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं कहा है, मुझे पता है आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे पता चल गया।

खुशी मिल गई है और यहाँ पर डीएवी कॉलेज रोजबेल की एक फुटबॉल टीम है जो हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है. वी डू हैव मिस्टर तिवारी, चेतन श्रीकिशन, अक्षय जूतन, काविश बतू, सुमा, कपिल बाबूलाल, यादव ओकेल, यशिल रघुनत, अक्षय जगा सिंह, पासेनू रायन, शक्ति चितामन, पास्कल किरण, आयुषा पयाग, मिस्टर मीटू, राजू और कमल बसंत. ये सब लोग ये जो वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल के जो तगड़ा मैच होने वाले हैं इसको लेकर के वे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं. एक पोर्टुगल को सपोर्ट करने वाले हैं, जो जबकि दूसरी ओर वी डू हैव फ्रांस या फिर इंग्लैंड के भी सपोर्टर्स इस टीम में हैं. तो चलिए अगला गीत स्पेशली उस फुटबॉल टीम के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू पास्कल किरण जो इंटर कॉलेज 2026 ऑफ मॉरिशस जो कोडो में लग रहा है वहां पर भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जा रहे हैं. हम पास्कल किरण को कहना चाहेंगे बोन कुराज, अभी के लिए हल्ला बोल.

जी दोस्तों, इस वक्त 7:49 हो गए हैं। गुड आफ्टरनून, अभी गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग ना। प्लीज अगला गीत सैरा बानू और अब्दुल के लिए हो जाए। और इस वक्त हम लोग एक गर्म चाय पी रहे हैं। और अच्छा, इस टाइम पर गरम चाय, क्या बात है जी। कभी कभी जब हम लोग चाय के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा जो सिचुएशन है एक अलग एक अलग फेज में पहुंच जाते हैं। सो वी डू हैव ज्योति फ्रॉम शातो बेनागस। उन्होंने कहा नेक्स्ट गाना आशनी, रेखा, सुरेखा और सभी मांडव फैमिली के लिए हो जाए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे विक्रांत के नाम, जो इस वक्त उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई हैं

और हमारे शो को भी एंजॉय कर रहे हैं रामनियाल फैमिली के लिए अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो एग्जैक्टली लाल माटी के हैं। तो चलिए ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

जी हाँ दोस्तों, हमारा दिल तो यहाँ पर धक धक इसलिए करने लग गया है क्योंकि 90s के गाने सुनने के बाद मूड भी काफी रोमांटिकली सेट हो गया है। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर दिलों की आवाज कार्यक्रम। और थैंकिंग यू फॉर सेंडिंग अस मैसेजेस ऑन 5250-6200 या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं 402-80-70 पर। और अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे प्रिया के नाम, उनके लिए लवली पति किशन, साथ ही साथ उनके भाई विकी। वी ऑल्सो हैव विदुला।

जो दोस्तों इस वक्त रात के 8:21 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो अगला गीत है स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे खासकर पूनम मुगन जो एग्जैक्टली पाई के रहने वाली है, उनके पति हैं मनीष अभी उसो हावा परितुष्टि और उनकी जो प्यारी जो ननद है जिनका नाम है अस्मिता वे उसो हावा फाब्रिसा और फाब्रिस का एक छोटा सा लल्ला है। ये गाना खासकर हम उपनीता के नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे जो मोताइलों के रहने वाले हैं सभी दोसिया फैमिली और इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ हैं विशाल और डॉक्टर कुशल और उनकी प्यारी जो लवली वाइफ है जिनका नाम है वेदना। सो 402-80-70 पर 402-80-70 पर आप हमें फोन कर सकते हैं। अभी के लिए छन छन।

रात बाकी है और बात भी बाकी है और इसी टाइम पर ये जो गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे खासकर वशिष आपादू के नाम जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं. वी ऑल्सो हैव रोशनी नोबिन और वशिष की मामी, हमारी प्यारी मामी, जिनके हाथ में एक अलग तरह के चमत्कार है, उनके हाथ में एक अलग तरह की यूनिकनेस है. साथ ही साथ हम मिस को कैसे भूल सकते हैं जो अपने हाथों से बनाए गए जो डिजर्ट है उसमें एक अलग तरह की मिठास है. ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली महादेवन के नाम, जो जिनके हाथ में एक ऐसे चमत्कार है जो एक गार्डन को बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं. ये गाना खासकर हम आंटी नंदिनी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो रोटी खिला करके हमारे दिल को खुश कर लेते हैं. सो मिस, मामी, नंदिनी और साथ ही साथ हैं रोशनी और नंदिनी. ये गाना आप लोगों के नाम, रोशनी के बेटे के नाम, रोशनी की प्यारी बहू के नाम और जितने सारे नुबिन और आपादू फैमिली हैं और उनकी जो स्वरांजलि ग्रुप है उनके लिए ये गाना स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे. लव यू ऑल. आप लोगों ने प्यार दिया परिवार की तरह, आप लोगों ने सहारा दिया एक परिवार की तरह.

और आप लोगों की मजबूरी को दूर भगाने का सॉलिड आइडिया ये है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ये एक ऐसा गीत है, ये एक ऐसा फिल्म है जहां पर आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे विकी और उनके दो बच्चों के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण एंड वृष्णि।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुदेवी जो वाकवा के रहने वाली हैं। अभी आपके प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू सो मच इसके लिए। प्लीज़ मेरी दीदी के लिए अगला गीत हो जाए जो त्रियोली के रहने वाली हैं। वी डू हैव ललिता, जितने सारे कुशल फैमिली हैं, विदाउट फॉरगेटिंग आत्माराम भैया मालेगा जो से हैं, वी ऑल्सो हैव रामरतन फैमिली और आपकी पूरी टीम। और ये गाना खासकर अभिजीत के लिए डेडिकेट करने की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे पापा जी संदेश के नाम, जिनका आज जन्मदिन है। बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम तुरल फैमिली। मामा है कल्याणी और भाई है देवेश और लेतीशा और जितने सारे तुरल फैमिली जो एक्चुअली लेउशित यहोश के रहने वाले हैं, और जितने सारे लोगों का आज जन्मदिन है, दिल से हम आपको कहना चाहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग अपनी जो बर्थडे है मना रही हैं। दिल से आपको हम कहना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे। रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत सारा प्यार बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। एंड दोस्तों, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे एंजॉय टू द मैक्स, हैव ए लवली वीकेंड एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। टिल देन, अभी की ओर से बाय बाय।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे. भोजपुरी तड़का में आप सबको के बहुत बहुत स्वागत बा. रात के ठीक 9:04 होल बा और आज बीफे के रात है 11 जून 2026. एगो बहुत ही ऐतिहासिक दिन जबकि हमने के देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पूरा दुनिया फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो शुभारंभ हुआ था ओके ई बखत दिखा था वजह और आज से ई जो फुटबॉल के बुखार बा उस सबको एक चढ़ रही तो ऐसा में जे लोग फुटबॉल नहीं देखा था वंजा जे लोग ई बखत रेडियो सुना था वंजा जे लोग भोजपुरी तड़का के बिना उन लोग के जीवन नहीं चलेला आप सबको के नाम ई पहला गीत सुमन राम तोहल के आवाज़ में और एक बात जैसे जानेला हमेशा की तरह आपके फरमाइश पर ई प्ले लिस्ट बदल ले जाए और आपके फ़ोन के इंतज़ार हमके रहे के शुरू हो गल बा तो फ़ोन करा और अपन फरमाइश भेजा.

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: अरे बंदूकी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे मैं क्या करूं? कुछ करो।
2: अरे बोलो गौरी।
1: अरे क्या चल रही है? बंद
2: कर बंद कर।
1: आपका ब्रश ऑल इज वेल शुरू हो गई ऑल इज वेल
0: रविवार 14 जून को एनबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे 2010 की हिंदी मूवी अनजाना अनजानी रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माई गई अनजाना अनजानी।

रात के 9:14 हो गल बा और आप लोग के फोन कॉल्स आवता एक के बाद एक। अगला जनगीत चली किशोर खिमिया के आवाज में। ये गीत खास तौर पर गोंगोप से सुनीता जी जैसे प्रोग्राम शुरू हो पहला कॉल इन कर हिया। और आप हमेशा की तरह अपन बहन विमाला के नाम करत हवा अगला गीत। और अगला गीत कोंगोमा के विमाला जी खातिर। और फिर जो अगला फोन आल बा आप सब कोई के गीत अभी हम प्लेलिस्ट में शामिल कर ले जाब। तो फिलहाल सुनी जा सुगा रानी किशोर किमिया के आवाज़ में आप सब कोई के नाम। और एक बार फिर जो जन घर में अभी चहल पहल बा जहाँ एक तरफ टीवी चलाता वर्ल्ड कप के जो खुशहाली बा ओकर जो जुनून बा छागल बा शुरू हो गल बा। और जहाँ देख बता सब कोई अपन फ़ोन संगे हवन जा या तो फ़ोन के कनेक्ट करत हवन जा टीवी के साथ ताकि ये जो ऐतिहासिक घटना बा आप लोग सब बचा देखे। और जे आपके घर में थोड़ा जस्ती अब रात के ये सब फुटबॉल चली कोई आपके नींद खराब करे के धर्रा बुझाए तोहरा कोशिश हुआ था तो ढेर खिस चाहिए नहीं कहे कि एगो ऐतिहासिक घड़ी है ये सालों के बाद आवेला और बहुत इंतज़ार रहेला ये जो गतिविधि बा ये जो स्पोर्ट बा फुटबॉल के इंतज़ार सब कोई के रहेला वर्ल्ड कप के तो बुरा नहीं मनिया एगो छोटा समय खातिर बा और एगो बहुत बड़ा एगो जो गतिविधि है तो ये जो खुशी बा ये जो मस्ती के माहौल बा एकर में शामिल हो जाए जा। और फिलहाल आप सबके नाम किशोर किमिया के ये गीत

अगला जन गीत चली संतोष महादेव की आवाज में पियर पियर ऊंठी पियर पियर ऊंठी आप सब कोई के नाम जेकर घर परिवार में शादी ब्याह के मौसम चला था और आजकल शादी ब्याह के मौसम बा और ऐसन में फोंजुसक से उमा जी चाहत हवन कि गीत चली उनकर परिवार जहां पर ई बखत गीत गवाई चला था। आजकल तक गीत गवाई और शादी के कोनो खास दिन नहीं है, एगो समय चला रहा जब दिमास दिमास के दिन शादी डालल जात रहा, लेकिन अब उ प्रथा गल। अब लसमन में भी शादी होवेला, गीत गवाई खाली सुख के नहीं होवेला। एगो समय रहल जब पूरा सप्ताह गीत गवाई होवे, फिर बाद में हर सुख सुख के होवे। और अभी देखा बीफे के भी गीत गवाई चलता। तो उमा जी आपके परिवार के बहुत बहुत शुभकामना, जहाँ पर अभी शादी चली आपके गीत गवाई हरदी शादी चौठारी सबके शुभकामना प्रस्तुत करत है जा। और देखत है जा कि दुगुना खुशी के मौसम बा, बोलल जला कि हमने के जोन उत्साह हमने के जोन ऊर्जा जोन लेने आशी है वो हमने तक

सीमित नहीं रहेला जे खुशी उत्साह के जो ऊर्जा बा आप से निकली तो वो आपके चारों ओर एक असर पड़ेला और अभी जो खुशहाली जो उत्साह के माहौल बा वो पूरा दुनिया में चलता तो चला ये उत्साह और ये खुशी के माहौल में हमने भी शामिल हो जाए जा और उधर जे स्पोर्ट्स चलता तो इधर शादी भी चलता तो पियर पियर उठी संतोष महादेव की आवाज़ में उमा जी के ओर से आप सबको के नाम।

हैप्पी बर्थडे बोन एनिवर्सरी जन्मदिन बधाई। आज 11 जून के जितना कोई के घर में, जितना कोई के आस पड़ोस में, जितना कोई के परिवार में जन्मदिन के समा बंधल बा, आप सब कोई के भोजपुरी तरका के ओर से बहुत बहुत बधाई। हमार सब शुभकामना बा आप लोग के साथ। और ये मौका पर, जन्मदिन के मौका पर छोटी पोलॉजी से ललिता के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रकट करत हवन। ललिता जी उनकर जन्मदिन रहल दिमास के, तो छोटी जी इनकरा जन्मदिन के ढेरों शुभकामना देवत हवन। और इस शुभकामना ललिता जी के उनकर पूरा परिवार के ओर से, आत्माराम भैया के ओर से, बुबासे से, सुदेवी के पूरा परिवार के ओर से, और उनकर कुशल परिवार के ओर से, पूरा राम रतन परिवार के ओर से, मालेगांव के उनकर सब सदस्य के ओर से।

रात के 9:37 होगल बा और हमने के साथ रही अभी से 11 तक। अभी 9:37 मतलब कि 1 और लगभग 20 तक हमने के साथ रही। आप बहुत प्यार के साथ ये प्रोग्राम में शामिल हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो गीत चली सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली, ये गीत के फरमाइश कर ले हवन फ्लिक ऑन फ्लैक से अनीता जी। और अनीता जी ये बखत जितना कोई ये प्रोग्राम सुनत हवा जा आप सबको एक नाम ये गीत करत हवन, साथ में जितना कोई ये बखत काम करत हवा जा आप सबको एक नाम और ख़ास तौर पर MBC के पूरा रेडियो टीम के नाम करत हवन। चमेली चमेली ये गीत काफ़ी मशहूर है और ये गीत सुनने के चाह रखत हवन शीला जी और सुरेन जे लोग फ्रांस से अभी आ हवन जा मॉरिशस और पिछले हफ्ते में हवन जा। ये गीत शीला जी आंसले के नाम करत हवन और फिर मेगलिन के नाम जोजियान के नाम और अपन सब लड़का लोग के नाम जे लोग मॉरिशस में हवन जा, मॉरिशस से बाहर फ्रांस में एम्स्टरडम में जहाँ भी हो यंसा सब के नाम करत हवन और ख़ास तौर पर रुद्राक्ष के नाम जे ये बखत दुनिया के सैर पर निकला हवन। तो चला घूमे घामे के ये गीत आप सब कोई के नाम।

जवानी के रेल धुआं उड़ेले चलल जाला सिटी बजेले चलल जाला ये गीत खास तौर पर बुआशेरी के धनी जी के ओर से जितना कोई बखती प्रोग्राम सुनत हवजा आप सब कोई के नाम और धनी जी ये गीत प्रथमन खास तौर हमार पर चलावत हवन हमार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी आपके मनपसंद गीत धना जी नाव जी के आवाज़ में।

10 बजे में लगभग 7 मिनट कमती बा और अगला गीत चली विक्रम कुलाचन के आवाज में आप सब कोई के मन पसंद धोती पोती पगड़ी और ये गीत एगो व्यक्ति के सबसे खास है और वो हवन भायब्बू भायब्बू जे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत के साथ हमेशा फोन करेलन आप ही जैसन और भायब्बू के ये गीत बहुत पसंद है ई गीत बा और छोर के मोरी स्वाबा ई दुगो गीत आप सब कोई के मन पसंद है ई हम जानीला और भाई अबू हमेशा के तरह ई गीत नाम करत हवन अबू अफेज अयाज असलम जहीरा रईस काला चोटी अपी और अपी के पत्नी खातिर और ई बखत जितना कोई रात के काम करत हवा जा जितना कोई अभी ड्राइव करत हवा जा जितना कोई फुटबॉल के आशिक नहीं हो जा आप फुटबॉल से जस्ती खुशी रह जा अपन रेडियो के संगे रह के आप सब कोई के नाम भाई अबू की ओर से

0: Jun Radio.
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station.
2: ज़िंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना.
3: मेरे में तीर चलाया था, लगा निशाने पे.
4: मगर एक बात तो साफ है, और अगर ये बात सच है तो सवेरे तक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो होम मिनिस्टर को छींक आने पे भी कई अफसरों के तबादले हो जाते हैं.
3: एक कोशिश करके देखते हैं.
1: दिल से दिल पर शनिवार 13 जून को एमबीसी 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म आन मैन एट वर्क 2004 की ये मूवी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी पर फिल्माई गई. आन मैन एट वर्क

आपके साथ पूरा एक घंटा बीत गया और एक घंटा के सफ़र हमने के तय करके बा बहुत सुंदर सफ़र बहुत सुंदर गीत बा आप ही के पसंद के गीत और हमने के मॉरिशन कलाकार लोग ही द्वारा गावल गीत अगला गीत आज के गमट सच में आज से तक गमट ही धरला शुरू हो गल बा वर्ल्ड कप के शुरुआत गमट से कमती नहीं है और ख़ास तौर पर अभी जब एकर जो शुरुआती इनोग्रल सेरेमोनी है ये सब कोई देखलन जा तो आप सब कोई के बहुत बहुत उत्साह बहुत बहुत शुभकामना ये पूरा सीजन खातिर और आज के गमट ख़ास तौर पर राजन रघुपत के नाम जे हमने के सुनत हवन बहुत दूर से लंदन से तो राजन जी बिस्वानी दीपा के आवाज़ में आपके और आपके परिवार के नाम ये अगला गीत आज के गमट कुकू

जरूरी नहीं बात धोखा दे के ला फ्रांस जाए खातिर मेक्सिको जाए खातिर कहूँ भी जाए खातिर धोखा के बिना भी सकब जाए कहे कि आजकल वर्ल्ड कप चला था और दुनिया भर में एगो जुनून छागल बा और मेक्सिको अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में चले होला ई मार्च के मॉरिशस में बेसब्री से देखे जाए के इंतज़ाम कर अगर बा कितना कोई छुट्टी ले ले हवा जा कितना कोई रातों रात उठ के जगते जगते ई सब मैच देख बजा तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना चाहे आप कोनो टीम के भी साथ देवत हो बा वो चाहे अर्जेंटीना रही फ्रांस रही स्पेन रही जोन टीम सबसे बढ़िया बा जीत ओकरे होई ऐसा शुभकामना के साथ आगे बढ़ी जा अगला गीत धनाजी नावजी के आवाज़ में अगल में लुकनी बगल में के बा चला सुनी जा ये गीत के फरमाइश कर ले हवन तेहूश से शांति जी अपन पूरा मराठी परिवार के नाम जे लोग दागुचिया से सुनत हवन जा और उनकर भगीना ओम के नाम जे अपा दागुचिया से हवन तो चला शांति जी के फरमाइश पर ये गीत आप सबको के नाम

और एक खूबसूरत गीत के बाद जो अगला गीत चला था इंद्रासन से ढोलक मंगाईला, ये ललिता पुनीत गैले हवन। ये गीत के फरमाइश करत हवन सजीद रोजिल से, और सजीद खास तौर पर केरला के अपन दोस्त लोग के नाम ये गीत करत हवन, जे लोग आज उनकर से घर पर भेंट कर लन जा, और उनकर दोस्त में हवन बाला, फिर सुब्रमण्यम और उर्वनी, और साथ में जोसेफ। और सजीद सब कोई के नाम ये गीत करत हवन जे लोग ई बखत रेडियो सुनत हवा जा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

रात के 10:25 हो गल बा और आप लोग ई बखत तक साथ देवत हवजा बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गीत चली सुदेवी जेवाकवा से हवन उनकर फरमाइश पर। सुदेवी जी ये गीत अपन दीदी ललिता के नाम करत हवन, आत्माराम भैया के नाम और सब राम रतन परिवार के नाम आलेगा के, और जितना कोई भी ये बखत काम करत हवन जा खास तौर पर MBC रेडियो पर सब के नाम आप ये गीत करत हवा। ये गीत खास तौर पर चितवीर के फरमाइश पर, चितवीर जिक्का जैन क्यूपिप से फ़ोन करत हवन। चितवीर एगो छोटा लड़का हवन, उ बोलत हवन कि उनकर फूफू के जन्मदिन बा और ये जन्मदिन काल मनावल जाए। फूफू के नाम है शर्मिला और बहुत बहुत बधाई फूफा के ओर से। फूफा के नाम संदीप, उनकर दादी, उनकर माता पिता, उनकर चाचा और उनकर बहन भाविया के ओर से। तो चितवीर के फरमाइश पर ये अगला गीत बहुत अच्छा लगेला सुने के, जब 8-9 बरिस के एगो लैका टेलीफोने करेला और भोजपुरी तरका प्रोग्राम में अपन फूफू अपन परिवार के कोनो भी सदस्य खातिर कोनो गीत मांगे लाता। तो चितवीर आपके फरमाइश पर चला ये गीत सुनी जा।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.
3: रात के 10 बज के आधा हो गए और आधा घंटा के सफर बाहमनी के सामने. देखते देखते एक घंटा आधा बीत गए और ये जो अगला गीत चली, ये अगला गीत के फरमाइश अलबा

मॉडल बीएसए मीराबाई दर्मिया आप सुने चाहता हुआ बिछमावती संपत की आवाज़ में गीत गवाई में जाना है रे चंदा और गीत गवाई हर तरफ छागल बा गीत गवाई और गमट ही मौसम चला था और इधर फुटबॉल के भी जो क्रेज बा वो भी शुरू हो गल बा तो चला बिछमावती संपत के आवाज़ में ये गीत सुनब जा मीराबाई दर्मिया के फरमाइश पर उनकर पतिदेव उनकर बेटी उनकर दामाद बाबू और पूरा पाइडिया और दर्मिया परिवार के नाम और आप जेकर भी घर परिवार में ये बखत गीत गवाई के तैयारी हुआ था कोई हियाँ आज हुआ था तो कहीं काल हुआ थो ता आप सब कोई के शादी विवाह हरदी और गीत गवाई के बहुत बहुत शुभकामना

0: ए बखत रात के ठीक 10:37 होल बा और अगला जो गीत चली संतोष महादेव के आवाज़ में अहो दुल्हाराम एक बार फिर उस सब परिवार के नाम जहां पर शादी ब्याह के मौसम चलता और अभी अभी गीत गवाई से वापस लौटत हवन प्रभा आप बेलगोज से हवा और प्रभा शादी के बहुत बहुत शुभकामना प्रकट करत हवन क्रिश सीता और वंदिश के नाम इनकर माँ शोभा पापा रमेश भाई बहन और पूर्ण मानसी परिवार के ओर से कथबोन से जिलो घवंजा और पूरा बिकाजी परिवार के ओर से और साथ में काली माता मंदिर के जितना सदस्य हवंजा परिवार जैसन हवंजा और अभी अभी गीत गवाई में आके सुंदर माहौल सजा के गई लंजा त आप सब कोई के ओर से जोन दुल्हा दुल्हिन के शादी बा उन लोग के बहुत बहुत शुभकामना बेलगोज के प्रभा जी के ओर से
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your morning radio station
4: Zindagi ke anmol lamhe Radio Mauritius ke saath
5: Bhojpuri tadka Kiran Sanghe

रात के 11 बजे में लगभग 15 मिनट कमती बा और अगला गीत नीरज गुप्त मधु के आवाज में ये गीत सुने चाहत हवन कथुबोन से सरिता जी और साथ में फरमाइश कर ले हवन आत्माराम जी अपन चारों बहन के नाम ललिता सुदेवी प्रभावती और छोटी के नाम आत्माराम जी बीमार हवन आशा करत है जा उनकर स्वास्थ्य बहुत जल्द अच्छा हो जाए और जितना कोई भी हमने के साथ देला जा आज के रात आप सब कोई के आपके दिलचस्पी खातिर आपके साथ खातिर आपके प्यार खातिर आपके फ़ोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी भी फ़ोन कर ले हवन और आप सब कोई के हमार ओर से ये रात्रि के बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा अच्छा विचार के साथ आज के रात नींद में जई बजा कहे कि बुरल जला अंतमति सोगति जोन आखिरी सोच के सुते जाइबा वैसन ही सुबह आप पाइबा। तो आप सब कोई के शुभ रात्रि हमने के मुलाकात पर कल फजर के हुई फिर से और नहीं तो लेंथ के फिर से भेंट आप जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
3: अरे बंदूक स्टार्ट नहीं हो रही।
4: आकाश कुछ करो।
3: अरे मैं क्या करूं?
4: अरे बंदूक आ रही।
3: अरे खजाना नहीं बंद कर।
4: बंद कर।
3: आपका

0: Nice. Oh, Oliver, Oliver. Oliver, too long. Too long. Oliver, Oliver.
1: रविवार 14 जून को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे 2010 की हिंदी मूवी अनजाना अनजानी रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माई गई अनजाना अनजानी।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ,
1: जहां सुर हो, संगीत हो और दिल से निकले एहसास हो, वही तो है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सा सफर आपके और हमारे बीच में। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम।

हर गीत एक एहसास है, हर सुर एक याद है, और आज का हर पल आपके नाम है सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल, आज का दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, कुछ मिनट अपने दिल के लिए जरूर निकालिए और सुनिए वो गीत जो कभी दिल से नहीं उतरते हैं। और गिनेशा की तरफ से अगला नगमा खासकर आपके नाम।

संगीत की दुनिया में कुछ गीत हमेशा अमर रहते हैं और आज हम उन्हीं अमर नगमों को लेकर हाजिर हैं। बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को फिर से महसूस कर लीजिए। आप सुन रहे हो सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

पुराने बॉलीवुड के गीतों की मिठास आज भी उतनी ही ताज़ा हैं जितनी पहले थी, तो चलिए उसी मिठास का मज़ा ले लेते हैं। वैसे हर धुन में छुपा है एक रिश्ता और हर लफ्ज़ में छुपा है एक जज्बात। ये सफ़र आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे पर। तो चलिए जी, हमारी तरफ से अगला नगमा सारे सुनने वालों के नाम जो बड़े शिद्दत से गिनेशा का साथ दे रहे हैं इन योर सुनहरे पर।

0: मोहब्बत का नगमा
1: जो गीत माँ बाप ने सुने, जो हमने सुने और जो आज भी नए लगते हैं, उन्हीं गीतों का खूबसूरत संगम है सुनहरे पल में। आज के गीत आपको मुस्कुराएंगे, आज के गीत आपको मुस्कुराएंगे भी और शायद थोड़ा इमोशनल भी कर देंगे। बस दिल खोल कर सुन लीजिए और यूं ही साथ देते रहे ऑन रेडियो मॉरिशस।

म्यूजिक कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे गीत हमेशा जवान ही रहते हैं और इसी खूबसूरत एहसास के साथ इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये जो सुने

रे पल हम लेकर आते हैं यादगार बना देते हैं पुराने गीतों के साथ आइए इन नगमों के साथ दिल को सुकून देते हैं और अगला नगमा आप बस सुन लीजिए आपके लिए ही है

0: मानना तो पड़ेगा कि बहुत सारे ड्राइवर्स लोग जो हैं हमारा साथ देते रहते हैं ऑन द रेडियो मॉरिशस इस वक्त, पुराने गीतों को एंजॉय करते रहते हैं और साथ साथ में इतने सारे मॉरिशियंस हैं डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब, साथ निभाते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए ये अगला नगमा हमारी तरफ से आप लोगों के नाम, खासकर हमारी तरफ से।
1: मर कर भी तुमको

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गनीशा टू से गुड बाय टू यू. हम बाय बाय इसीलिए बोलते हैं ताकि हम दोबारा वापस आ सके. मिलेंगे फिर से एक और सुनहरे पल के खूबसूरत से सफर में. तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

My pals, my buddies, my friends, today we've all graduated. पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है. आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहां होंगे. I'm really sad this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you.

हिंदी सिखाई हंसते हंसते। अरे धन्यवाद आपका, अच्छे अंक देके आपने हमें बचाया हंसते फंसते। हे थैंक यू।

मैंने आरडी बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एसजी बर्मन के फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज्यादा करते थे म्यूजिक को, तो बर्मन साहब को जरा इस पर शिकायत होती थी। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम जरा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ, वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो